मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ, दिन रोज की तरह वैसे ही निकला है जैसे हर रोज निकलता है, लेकिन आज के दिन में, आज की सुबह में और आज की सुबह की हर एक किरण में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, जय श्री कृष्णा। जी हाँ, क्योंकि आज है हमारे माखन चोर यानी किशन कन्हैया का हैप्पी बर्थडे, और आज इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मैं सताक्षी एक बार फिर से हूँ आपके साथ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। सो भाई, आपके मॉर्निंग वाले शो इट हैपेंस का हो गया है टाइम, यानी कि आज ब्रेकफास्ट पर आपके साथ होने वाली है किशन कन्हैया की और ऑफ कोर्स आपके दिन की, इसकी शुरुआत की ढेर सारी बातें। तो बस इस विश के साथ शुरू करूंगी आज के शो को और आज के इस दिन को कि आपकी जिंदगी का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, और कान्हा करें कि आपकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएं, बिल्कुल वैसे जैसे कान्हा जी मक्खन को छूमंतर कर देते थे, उसी माखन की तरह आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएं और आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की दस्तक हो। तो चलिए मिलकर गुड मॉर्निंग करते हैं हम और आप, और कान्हा को कहते हैं जन्मदिन मुबारक, उनको बर्थडे विश करते हुए आगे चलते हैं अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 यहां पर। और देखिए आज मैं किसी को कोई बधाई नहीं देने वाली हूं भाई, सबसे पहले कान्हा को कहने वाली हूं हैप्पी बर्थडे कन्हैया। और हमारी तरफ से, हमारे सभी लिसनर्स की ओर से, रेडियो प्रस्थानी की पूरी टीम की ओर से कान्हा को उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और हमारी विश है, हाँ मैं नॉर्मली कहती हूँ ना भगवान करे, ईश्वर करे, लेकिन अभी कैसे करे, अभी तो खुद कान्हा जी की बात है ना, तो विश की कान्हा जी जो है जल्द से जल्द अवतार लें। और हमें यार, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि काश के मैं उस युग में होती जब कान्हा को माखन चुराते देख पाती, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन काश काश के इस युग में जो है वो वही मंजर मुझे अभी इसी वक्त देखने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। वेल, इसके साथ ही विश करते हैं उनको भी जिनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल और खास है। आज बहुत स्पेशल हो गए हैं आप भाई, आपका बर्थडे कान्हा जी से कनेक्ट कर गया है। तो बस जिंदगी में कभी भी आपसे पूछा जाए तो कहिएगा भैया एक जन्माष्टमी तो मेरे बर्थडे पर भी पड़ी थी, है ना। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो राधा किशन की तरह आपकी जोड़ी भी हमेशा अमर रहे। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनकी जिंदगी में होने वाला है कुछ स्पेशल, या आज वो झांकी लगा रहे हैं और कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारे चलिए ट्रैक के साथ आज का सफर। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

चापंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपनी रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त सताक्षी। आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। वैसे दोस्तों, लाइफ में बहुत कुछ बस यूं ही हो जाता है, कभी ट्रैफिक, कभी बॉस की डांट, तो कभी सुबह उठने का आलस। लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक अलग ही फील है, एक अलग ही वाइब है आज, क्योंकि आज जन्माष्टमी और त्योहारों वाला फील आना, मतलब कोई भी त्योहार हो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है कि भैया आज तो कुछ स्पेशल है, है ना। तो बस आज के दिन की शुरुआत करूंगी एक बढ़िया सी बात के साथ। देखिए, जिंदगी जो है वो आपको बहुत सारे यू टर्न से लेकर जाती है, है ना। जो टर्न्स आपने अपनी लाइफ में सोचे नहीं होते हैं वहां वहां से लेकर जाती है। अब कृष्ण जी ने क्या सोचा था, उन्होंने तो सोचा था कि भाई एक बार कंस का वध हो गया, उसके बाद तो भैया हम राजा बन के रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जरासंध ने उन्हें बहुत दिनों तक टिके नहीं रहने दिया ना, वो युद्ध करता रहा, परेशान होते रहे कृष्ण। तो क्या किया उन्होंने, अपना यूटर्न लिया और पहुंच गए द्वारिका और एक नई नगरी बसा ली। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है, और जो हमें जिंदगी देती है ना, उस पर चलकर हमें कुछ नया क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए। ठीक है जी, तो कृष्ण की इस बढ़िया सी सीख के साथ चलिए करते हैं दिन की शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ भी। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस विद सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रसारणी 1701 एम्पायर। मैं जानती हूँ कि बहुत हड़बड़ी शुरू हो जाती है सुबह होते होते, और हो सकता है कि आप सब लोग जो मतलब दूर ऑफिस जाते हैं ना, जिनका ऑफिस थोड़ा दूर होता है घर से, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जो जाते हैं, वो अक्सर सुबह जल्दी निकलते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस वक्त अपनी गाड़ियों में हो, कैब में हो, ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, या बहुत सारे लोग जो इस वक्त जॉगिंग कर रहे हैं, इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद की बॉडी को बिल्डअप कर रहे हैं। एक बात सोचिए ना, हम सब सिर्फ भाग रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है लाइफ का, कर्मणि बाधिका रस्ते, यानी अपना 100% दीजिए, लेकिन रिजल्ट की टेंशन में अपना आज मत बिगाड़िए। तो आज आपकी लाइफ का गोल बस इतना होना चाहिए कि जो भी काम आज हाथ में है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे ऑफिस आप जा रहे हो, चाहे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग हो, उस काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे और बिना किसी स्ट्रेस के करेंगे। ना ट्रैफिक को देखकर हड़बड़ में आएंगे और ना ही अपने एक्सरसाइज को बीच में छोड़ेंगे। तो चलिए, बस इतनी सी बात कहनी है कि आज कोई ओवरथिंकिंग नहीं, डील पक्की। हाँ, इसी बात के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और आज है जन्माष्टमी। चलिए सुनते हैं आज गानों की हैट्रिक में वो गाने जो जन्माष्टमी को और भी खास बना देते हैं। स्टे ट्यून हमारे साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

महोत्सव पर आज हम इट हैपेंस में बात कर रहे हैं कृष्णा की, और इस वक्त गानों की हैट्रिक में आपको सुनवा रहे हैं वो गाने जो जन्माष्टमी को और भी खास बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिजवाणी सताक्षी के साथ।

जी हाँ, गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं मेरे साथ, और गानों की हैट्रिक में आइए आगे चलकर चलते हैं आपको इस अगले ट्रैक के साथ। सुनते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल इट हैपेंस, और सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी सताक्षी के साथ।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
2: फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: 1701M पर आपके साथ सताक्षी है। इट हैपेंस में आपके साथ हो रही है आज माखन चोर पर और जन्माष्टमी पर। आज की सुबह कुछ ढेर सारी बातें एंजॉय कीजिए मेरे साथ। इट हैपेंस और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

शोर सारी नगरी रे आया फिर रज का बाका संभाल तेरी गर...

नगरी रे सारी नगरी रे आया फिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर 6 संदेश अलग दराल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुकिया जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जेहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है ओह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हूं ता तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स ते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाड़े दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है ता बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों ता हुण मैं थोनू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नू जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा है दस दिओ उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर हमारे हम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होता है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पापी लै गई सुणो।
1: It's Black Lives.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तो देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं तां लोक अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स सिनेमा घर मालिका दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आज के संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मां रिलीज होण तों पहलां ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलदा हैगा, जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस विच जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या ओ मूवी दिखाते रहते ने, डिजिटल राइट्स विच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स विच गाने तो कमाई होंदी है। फिर होंदा इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले विच एवरेज होंदी है, पर इन राइट्स की वजह नाल प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लैंदे ने, पर मूवी दे हिट फ्लॉप या एवरेज होण दा वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब नाल ही तय होंदा है।

0: हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420933171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420933171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुन जिहड़ी मैं वर्ड दी गल कर रही हां, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा विच समझिया जावे तो स्लीपर हिट ओ फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेड़े बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जाना नहीं, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिस्वानी वनसर वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो बिस्वानी एट बिस्वानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई डी है सर, जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: ब्रिस्बेन, क्या तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well-known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।
7: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488-623-459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409-390-583 या फिर बाबा ऑन 0413-701-651।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भाई बहनों को, भाई बहनों का ये त्योहार। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, आ गई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निव्या। स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम इवनिंग वाइब में। और हम यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम। आज है फ्राइडे, तो सबसे पहले हैप्पी फ्राइडे, और उसके बाद जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी हाँ, भगवान कृष्ण आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारा धन धान्य लेकर आए, और बहुत सारी नटखट शैतानियां भी लेकर आए। आप लोग बोलोगे शैतानियां, निव्या शर्मा वो अगर तुम विश नहीं भी करती तो चल जाता। चलिए, जो भी है, कहने का मतलब ये है कि जब भी बात होती है भगवान कृष्ण की तो शैतानियां याद आती हैं, क्योंकि उनकी नटखट शैतानियां इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो अपनी शैतानियों के लिए दूर दूर तक फेमस थे। अब आप मुझे बताइए कि आपने भी बचपन में उतनी शैतानियां की हैं या नहीं की हैं। जी हाँ, और इसी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी है आज, तो जैसे मैंने कहा कि खुशियां, हेल्थ, वेल्थ, मैं आपको सब कुछ विश कर रही हूं यहां पर। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हेल्दी रिचुअल के साथ, एंड दैट इज ऑफकोर्स डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त गाने के साथ, और उसका नाम है मैंने पायल है चिनकाई। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ये गाना कहाँ से, वेल आई डोंट नो, मेरे दिमाग में ये बज कर रहा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। और क्या धमाकेदार शुरुआत है, मतलब मजेदार है, एकदम वाइब वाली है। और वो जो फेस्टिविटी जो है वो आप फील कर पा रहे हो स्टार्टिंग के ही गानों में। सो ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स की शुरुआत जो है वो हो गई है, जन्माष्टमी आज है। अब धीरे धीरे हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से। इनफैक्ट रक्षाबंधन से ही हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके थे, लेकिन अब जो है ये सिलसिला चलता रहेगा दिवाली तक। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सो आई एम एक्साइटेड, यू शुड बी टू। एंड अब जरा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम जो है और टेम्परेचर क्या कह रहा है। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर, मैंने कहा था कि गर्मी होने वाली है, उतनी गर्मी होने नहीं वाली है, बट फिर भी आपको सूरज जो है वो एकदम चमचमाता हुआ नजर आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ओह समर्स आर हियर। जी हाँ, गर्मी आ गई है। जी हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रहा। और वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 29.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 28.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो चमचमाता हुआ सूरज हमें दिख रहा है, लेकिन 30% बारिश के चांसेस भी थे। और उसका मतलब यह है कि 30% इलाकों में जो है वो बारिश के चांसेस थे। तो मतलब कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, शायद हो गई है। ऑफ कोर्स ये नॉर्थ ब्रिस्बेन के कुछ इलाके हो सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो एकदम सूखा सूखा और खिला खिला रहा। वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की, तो 18 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। और एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, वहीं अगर कल की बात की जाए सैटरडे को भी, तो सैटरडे को भी ऑलमोस्ट उतना ही टेम्परेचर रहेगा, बस 1 डिग्री कम हो सकता है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहने वाला है। खिला खिला आसमान, खिला खिला सूरज और नो चांसेस ऑफ बारिश सो फार। जी हाँ, संडे की अगर बात की जाए तो 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जो कि काफी गर्म रहने वाला है। जी आप लोग बोलोगे कि एलो जी इतनी गर्मी ज्यादा ही आ गई। जी हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, बिकॉज 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर संडे को पहुंच सकता है। लेकिन वीकेंड पे आप मजेदार तरीके से बाहर निकलिए, और मैं तो कहती हूँ जरा ब्लू है पानी पानी भी देखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स समर्स या लेट स्प्रिंग जब भी होता है वो एक ही चीज आपको याद दिलाता है, और वो है कि पानी कितना खूबसूरत है, डाइव कितनी खूबसूरत है। बट तैरना आता हो तभी कीजिएगा, और ऑफकोर्स पानी के करीब भी तभी जाइएगा। इसी के साथ ये है टेम्परेचर आज का और अगले 2 दिन का, मतलब वीकेंड पे आपको काफी अच्छा मौसम मिलने वाला है और आप बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जितना मैं देख पा रही हूँ। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जरा आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए, आपकी फरमाइशें जो कि हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाती हैं, हमारे इस प्रोग्राम को खास बनाती हैं, और जो वाइब है हमारे प्रोग्राम का नाम इवनिंग वाइब, वो वाइब आपकी फरमाइशों से ही आती है। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, एंड दैट इज द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जी हाँ, अब वर्क फ्रॉम होम आप लोग करते होंगे, मैं तो वर्क फ्रॉम स्टूडियो ही करता हूँ क्योंकि मुझे तो भाई काम पे आना होता है और आपके लिए प्रोग्राम लाना होता है। सो मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बट द थिंग इज कि देर आर मेनी पीपल जो कि IT इंडस्ट्री में है, जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, और वो कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का फायदा उठा पा रहे हैं। जी हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इस दुनिया में जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं। अब इसमें बहुत सारे फायदे थे लेकिन काफी नुकसान भी थे। नुकसान कुछ ऐसे थे कि आपको जो है वो ज्यादा टाइम भी खर्च करना पड़ सकता था। ऐसे तो आप बोल देते थे कि यू नो व्हाट, इट्स टाइम, आई हैव टू लीव। बट अब जो है, जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया काफी सारी कंपनीज में, तो कुछ कंपनीज ने कहा कि ठीक है, तुम तो ऑलरेडी घर पर हो और घर से काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा और कर दो। जी हाँ, लेकिन देयर वर मेनी कंपनीज जिन्होंने इसे अच्छे से ही पूरा किया। मतलब 5 बजे, तो मतलब 5 बजे ऑफिस खत्म, मतलब अब जो है वो काम नहीं करेंगे, फिर चाहे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। लेकिन लेकिन लेकिन एक चीज है जो अब हुई है, जो कि पहले नहीं हुई थी, और वो है कि अब आपके बॉसेस जो कि ऑफिसेज में थे, शायद अब आपके घर में पहुंच गए हैं। जी हाँ, मतलब बॉसेस से पीछा आपका छूट गया था वर्क फ्रॉम होम में, मतलब नॉट लिटरली, नॉट एग्जैक्टली, बट कुछ हद तक। बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो अपनाते थे ताकि बॉसेस को लगे, कंपनीज को लगे कि वो काम कर रहे हो आप, लेकिन आप काम नहीं कर रहे होते। तो कोई चीज आप अपने कर्सर पे रख दोगे, माउस पे रख दोगे, स्पेस पे रख दोगे, और ऐसे से बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पर वायरल होती आई हैं। नाउ अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और खासकर विप्रो और कॉन्जेंट जैसी बड़ी कंपनीज ने एक नया काम कर दिया है, और वो है कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी के लैपटॉप्स में डाला है जिससे कि पता चल जाएगा कि आप सच में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब आपके बॉसेस जिनसे आप पीछा छुड़ा के ऑफिस में आ गए थे, घर से काम कर रहे थे, अब वो बॉसेस क्वाइट लिटरली आपके घर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, एंड उसमें कुछ एप्स हैं, कुछ चीजें हैं, मतलब वो हर एक चीज का ख्याल रखेगी। लॉग इन पीरियड तो एक चीज है ही, मतलब लॉग इन तो लोग कर ही देते हैं वर्क फ्रॉम होम में टाइम पे, लेकिन उसके बाद काम करते हैं कितना वो एक डिफरेंट बात थी। लेकिन अब जो है वो काम करना पड़ेगा, कुछ एप्स हैं उनमें लॉग इन करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं होती है तो आपकी पे डिडक्ट हो सकती है, आपकी लीव डिडक्ट हो सकती है, और ऑफ कोर्स आपको जो राहत मिल रही थी कुछ वक्त से, जो ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, घर से काम करने में ऑफिस से ऑफिस का माहौल नहीं होता, मतलब आपके बॉसेस आपके सर पे जो है वो तांडव नहीं कर रहे होते, लेकिन अब इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वर्क फ्रॉम होम भी वर्क फ्रॉम ऑफिस लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, और क्या आपकी कंपनी भी ऐसा करती है, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

क्विक चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारे पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज शनिबा के साथ। दोस्तों अब मैं बात करने वाली हूँ चाइना के एक जेस्चर के बारे में। जी हाँ, ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट चाइना एंड इट्स जेस्चर। जी हाँ, ये जेस्चर जो कि दिखाया गया है उन टॉप साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने किसी भी फील्ड में सबसे ज्यादा काम किया है। जी हाँ, ऑफ कोर्स हर कंट्री को अपने इन लोगों को जिन्होंने उस कंट्री के लिए सबसे ज्यादा काम किया है किसी भी फील्ड में, उन रिसर्चर्स को, उन साइंटिस्ट को ऑनर करना चाहिए। लेकिन हम कितना ही करते हैं, राइट? वी टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज, वी ऑनर सेलिब्रिटीज, वी वर्शिप सेलिब्रिटीज, बट वी शुड नॉट वर्शिप सेलिब्रिटीज, वी शुड वर्शिप पीपल जिन्होंने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, जिन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में, साइंस में, यू नो एरोस्पेस में, या किसी भी और यू नो फील्ड में जो है वो सबसे अच्छा काम किया, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया, हमें उन लोगों को वर्शिप करना चाहिए। लेकिन चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि अगर इस दुनिया में कोई नहीं भी करता है तो वो करेंगे। जी हाँ, सो चाइना इज गिविंग प्रोमिनेंट बिलबोर्ड स्पेस टू ऑनर इट्स टॉप साइंटिस्ट। जी हाँ, उनकी फोटो जो है वो डिस्प्ले की जा रही है उन बिलबोर्ड्स पर इंस्टेड ऑफ रेगुलर एड्स। मतलब वो जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं वहां पर साइंटिस्ट जिन्होंने किसी भी फील्ड में, रिसर्च में बहुत ही अच्छे से काम किया है और अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है, उनके लिए वो स्पेस रखा जा रहा है रादर देन एड्स एंड सेलिब्रिटीज एंड यू नो व्हाट अदर कमर्शियल्स। एंड दिस इज सो सो सो गुड। आई थिंक वी ऑल शुड लर्न, ऑल द कंट्रीज शुड लर्न फ्रॉम दिस जेस्चर ऑफ चाइना, बिकॉज दैट्स हाउ इट शुड बी डन। जैसे मैंने कहा कि हमें ऑनर करना चाहिए, अगर हमें सच में वर्शिप करना है किसी को तो हमें उन लोगों को वर्शिप करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे लोगों की जान बच सके, जिसने एरोस्पेस में या फिर स्पेस में या फिर यू नो व्हाट किसी भी और फील्ड में सबसे ज्यादा काम किया, बिकॉज दे आर द पीपल जो कि इस चीज को कमांड कर सकते हैं, जो इस चीज के लायक हैं। जी हाँ, जिनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो है वो डिजर्व करती है पब्लिक रिकॉग्निशन। जी हाँ, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू टेक्नोलॉजी टू मेडिसिन एंड स्पेस रिसर्च, साइंटिस्ट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरी डे लाइफ एंड वेन देयर वर्क हैपन्स फार अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट। जी हाँ, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करता है कि शुड मोर कंट्रीज सेलिब्रेट देयर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एज वाइडली एज दे सेलिब्रेट सेलिब्रिटीज एंड एथलीट्स। मतलब हम सेलिब्रिटीज और एथलीट्स को इतना इतना ज्यादा सर पे चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या हमें उनको इतना वर्शिप करना चाहिए? Well, of course, the answer is here. And you know what, China, big round of applause to you because what you are doing is like elite. It's the best. ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हम करते नहीं है, कोई भी कंट्री करती नहीं है। बट इफ यू हैव स्टार्टेड इट, आई थिंक एंड आई होप और भी कंट्रीज जो है वो फॉलो करें। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, जब भी बात होती है हमारे एंसेस्टर्स की, एंड व्हेन आई से एंसेस्टर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपने करीबी करीबी एंसेस्टर्स की, मतलब जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। बेसिकली ह्यूमंस हमेशा से ह्यूमंस नहीं थे, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है और तब वो ह्यूमंस बने। और इसके बारे में अगर आपने लूसी मूवी नहीं देखी है देन इट्स हाईली हाईली हाईली हाईली रिकमेंडेड। जी हाँ, लूसी कौन थी? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है लूसी वॉज द फर्स्ट एप और गुरीला या जो भी आप कहो जो कि ह्यूमंस में तब्दील हुई थी, मतलब उसका एवोल्यूशन एज अ ह्यूमन हुआ था। जी हाँ, अब जब भी हमारा एवोल्यूशन हुआ है हमने अपनी किसी न किसी चीज को खोया है। जी हाँ, कभी हमने अपने फर को खो दिया, कभी अपने पूंछ को खो दिया, और कभी कभी आगे हमने और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को खोया। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम एवोल्यूशन होने वाला है तो ऐसा कहा जाता है हमारी आईब्रोज गायब हो जाएंगी। नाउ आप लोग एक दूसरे को देख लो आईब्रोज के साथ, क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है जब आईब्रोज ना हो। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा डरा किसको रही हो, हम बिना आईब्रोज के कितने बुरे लगने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एवोल्यूशन कोई ऐसे नहीं हो जाता दोस्त जस्ट 10-12 साल में या यू नो 90-100 साल में। एवोल्यूशन होने में टाइम लगता है और धीरे धीरे एवोल्यूशन जो है वो होता है। लेकिन यहां पर मैं एवोल्यूशन के बारे में बात क्यों कर रही हूं और मैं लूसी के बारे में बात क्यों कर रही हूं? वेल, यहां पर एक गुरीला है। जी हाँ, एक गुरीला जो कि फेमस है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, क्योंकि उसकी उंगलियां इंसानों की उंगलियों की तरह है। जी हाँ, मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी गुरीला की है लेकिन उसकी जो उंगलियां हैं हाथ की वो एकदम इंसान की तरह है। मतलब वो जो मेलेनिन होता है, वो पिगमेंटेशन होती है ब्लैक, जिसकी वजह से गुरीलास की जो हाथ होते हैं वो ब्लैक दिखते हैं, वो वैसा है ही नहीं, वो इंसानों की उंगलियां लेकर घूम रहा है। आप लोग बोलोगे कि एलो जी, अब तो प्रूव ही हो गया कि हम उन्हीं के कोई किसी को बंदर कहता है ना, मुझे नहीं लगता कि हमें बुरा मानना चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं से हम थे तो बंदर ही। जी हाँ, यहाँ पर ये जो गुरीला है उसका नाम है अनाका और ये अटलांटा के एक जू का है और इसने लिटरली ग्लोबल अटेंशन जो है वो कैप्चर कर ली है आफ्टर जू कीपर्स जो है शेयर्ड डिटेल फोटोज ऑफ हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैंड्स। एंड लेट मी टेल यू, ही इज नॉट अ मेल, शी इज फीमेल, मतलब वो एक फीमेल है। जी हाँ, अनाका जो है वो पैदा हुई है एक यूनिक कंजाइंटल स्किन पैच के साथ, जहां पर उसकी फिंगर्स जो है दैट लैक्स डार्क मेलेनिन पिगमेंटेशन। जी हाँ, वही पिगमेंटेशन, मेलेनिन पिगमेंटेशन जो कि उनको गुरीला बनाती है, और गिविंग हर पिंक स्किन ऑन पार्ट्स ऑफ हर हैंड्स। जी हाँ, मतलब अब उसके हाथ के कुछ पार्ट जो हैं वो लिटरली इंसानों की तरह दिखते हैं, वो बिल्कुल पिंक दिखते हैं, और इनफैक्ट उसके जो नाखून हैं वो भी इंसानों के नाखून की तरह दिखते हैं। जी हाँ, और जो क्लोजअप फोटोग्राफ्स है वो हाईलाइट करती है इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स, फिंगर नेल्स एंड स्किन क्रीजेस दैट लुक अस्टॉनिशिंगली सिमिलर टू ह्यूमन हैंड्स, जैसा मैंने कहा। जी हाँ, तो जू कीपर्स ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि उसके जो यूनिक हाथ हैं वो उसकी जो पिगमेंटेशन है वो रिमेन हमेशा से ऐसी ही रही, अनचेंज सिंस बर्थ, मतलब वो पैदा ही ऐसी हुई थी। और ये एक बहुत ही बड़ा और रिमार्केबल रिमाइंडर है कि हमने अपनी एवोल्यूशनरी हेरिटेज जो है वो शेयर की है, मतलब हम लोग ऐसे ही नहीं टकर आ गए हैं। मतलब हम लोगों को कोई नहीं कह सकता कि पहले इंसान आया या बच्चा आया, पहले इंसान आया या बच्चा आया, जैसे कहते हैं ना मुर्गी आई अंडा आया मुर्गी आई, हमारे केस में पहले बंदर आए, एप्स आए, गुरीलाज आए और उसके बाद हम आए, क्योंकि हम उन्हीं का ही एवोल्यूशन होकर आगे पैदा हुए हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ठीक है, मतलब अब कोई अगर बिस्सी ने हमको बचपन में बंदर कहा होगा तो अब हमें बुरा नहीं लगेगा। आई नो, मुझे भी नहीं लग रहा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसी के उपलक्ष्य पे ये खूबसूरत सा गाना।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ
2: यार आई एम सो वरीड आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट अतुल भारद्वाज जी है ना उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक ऑफेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट
2: थैंक्स अटनियर आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
3: अरे वाह इनका पता बताना
4: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5-1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171 Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: जी हाँ दोस्तों इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ दोस्तों यहां पर अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसी मूवी की जो कि चर्चाओं में बनी हुई है क्योंकि इससे रिलेटेड एक सीरीज पहले

गालियां. सो ऑफकोर्स यू नो वॉट, मिर्जापुर इज नॉट माई काइंड ऑफ मूवी और शो, बट अगेन जो फैंडम है इसका वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है. मतलब सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर का, ये दोनों ही शोज जो है वो ऐसा फैंडम कमांड करते हैं जितने की बहुत कम शोज कमांड करते हैं. और यहां पर मिर्जापुर में कौन कौन आपको मिलने वाला है, सबसे पहले तो पंकज त्रिपाठी आपको मिलने वाले हैं पहले की तरह ही, और अली फजल आपको इसमें मिलने वाले हैं, दिवेंदु शर्मा इसमें आपको मिलने वाले हैं, अभिषेक बैनर्जी आपको इसमें मिलने वाले हैं, रवि किशन आपको मिलने वाले हैं, जितेंद्र कुमार और ये रशिका दुग्गल. बेसिकली सारे के सारे वो खतरनाक से लोग जो पहले भी आपको ऐसे शो में नजर आ चुके हैं वो आपको मिलने वाले हैं. एंड यू नो व्हाट, जस्ट पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और अली फजल, इतने ही नाम काफी हैं इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए. और आपको पता है ये मूवी बहुत ज्यादा कमाई करने वाली, ये मैं आपको गारंटी देती हूं, बिकॉज द शो जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है. और पंकज त्रिपाठी इसको लीड कर रहे हैं रवि किशन के साथ, जैसे मैंने कहा, और ये बहुत सारे और भी लोग, गोलियां, मर्डर्स, बहुत ज्यादा मार धाड़ और वो सब इसमें आपको मिलता है, और ऑफकोर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गालियां. सो मिर्जापुर हो गई है रिलीज, एक्शन क्राइम थ्रिलर, और ये 4 सितंबर यानी कि आज ही के दिन रिलीज हुई है. अगर आप लोग मिर्जापुर शो को पसंद करते हैं देन यू कैन गो फॉर इट. और अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है कोई भी कॉन्टेंट जिसमें गालियां हो, कर्सिंग हो या फिर फालतू की मार धाड़ हो, देन डोंट गो फॉर इट. और पहले आप प्लीज ट्रेलर देखिएगा और फिर उसके बाद ही जज कीजिएगा. Of course, you can't watch it with your kids, you can't watch it with your family, and iske alawa baki aap jo bhi karna chahe, but yeah, Mirzapur is in theaters, so you can try. Yahan par ek aur gana aap sabke liye meri taraf se.

जी हाँ दोस्तों, आरएसए के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ रुख करने का वक्त हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम भारत की खबर से। जी हाँ, सबसे पहले बिहार, पटना से लेकर मुंगेर तक कई इलाके बाढ़ में डूबे। जो पटना है वो भी बिहार, जो बिहार का पटना है वो भी बाढ़ से जो है वो गुजर रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यही हाल राज्य के मुंगेर कई और जिलों का है। जी हाँ, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पटना सिटी के कई घाटों के बाद अब शमशान घाटों तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंच रहे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अम्माल, सलामी, दीनदरंगंज और चौक इलाके के साथ ही गाय घाट, कंगन घाट, पत्थर घाट, डमराही घाट, नूरंगंज घाट, पीर दमरिया घाट और बुंदेल टोलियों और अरिकागंज घाट सड़कों पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कई इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया है। वहीं मुंगेर जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यहाँ कई इलाकों के घर गंगा के पानी में डूब गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और ईरान का दावा, हमने नागरिक नहीं सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही टारगेट किया। सो कुछ वक्त शांति के बाद अमेरिका और ईरान का विवाद फिर से शुरू हो गया है। इन दोनों ने एक दूसरे पर ठिकानों पर, उनके ठिकानों पर जो है वो सैन्य हमले करने शुरू कर, लोगों की जान भी जा रही है। जी हाँ, अब अमेरिका ने तो ईरान पर हमला किया ही है, जहां पर ईरान का दावा है कि एक शादी वाले घर में वो जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है और उसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें लेकिन यही दावा अमेरिका और अमेरिका के साथ लगे देश भी कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अब यहां पर ईरान ने भी दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग्गाई ने दावा किया है कि ईरान के हमले क्षेत्र के देशों में खास तौर पर सैन्य लक्ष्यों को खिलाफ के खिलाफ थे और ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है। उन्होंने कतर की एक आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि बग्गाई ने कहा कि क्षेत्र के देशों पर ईरान के सभी सैन्य हमले सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाकर किए गए हैं। बगाई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कतर सरकार ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU को पेश किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज में पुष्टि की है कि कतर की धरती पर तैनात अमेरिकी फोर्स के खिलाफ ईरान के रक्षात्मक हमले विशेष रूप से अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने लिखा कि कतर की ओर से दावा किया गया है कि एकमात्र अपवाद 18 मार्च को एक गैस संयंत्र पर हमला था, लेकिन इस मामले में भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो संयंत्र उस समय ईरान के खिलाफ अमेरिका के आक्रामक अभियानों की मदद कर रहा था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी हवाई हमलों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उनके देश ने अमेरिकी सेना के विपरीत नागरिक ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस तथ्य की स्कूलों, अस्पतालों, आवासीय क्षेत्रों, शादियों, पुलों और अन्य चीजों पर अमेरिकी हमलों से तुलना भी करें।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna achha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
16: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
17: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
18: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
17: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
19: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो।
14: रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और जरा चलते हैं फिर अब हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ। हॉर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया की सेना भेजने की तैयारी। जी हाँ, दक्षिण कोरिया मीडिया के मुताबिक देश की सरकार हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की आजादी का समर्थन करने के लिए उपकरण और सैन्य बल भेजने की तैयारी कर रही है और इस मिशन को इस साल शुरू करने की योजना बना रही है। ईरान की महत्वपूर्ण अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के आधिकारिक प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि दक्षिण कोरिया अब शिपिंग की आजादी का समर्थन करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में सेना भेजने पर विचार कर रहा है। उसके विकल्पों में समुद्री गश्ती विमान, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पोत या समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने वाली यूनिट शामिल है। उन्होंने आगे लिखा कि दक्षिण कोरिया ने पहले कहा था कि वह अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ही तैनाती का विचार करेगा। ये बदलाव अब आया है जब ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध प्रयासों का समर्थन नहीं करने के लिए दक्षिण कोरिया की आलोचना की। समाचार एजेंसी राइटर्स ने बताया कि दक्षिण कोरिया मीडिया में सरकारी और सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि इस तैनाती के लिए संसदीय मंजूरी के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार कैबिनेट में योजना की समीक्षा करने के बाद सरकार इस महीने संसद की अनुमति पाने के लिए औपचारिक अनुरोध पेश करने की योजना बना रही है। दक्षिण कोरिया सेना की संभावित तैनाती ऐसे समय में हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा तनाव और कमर्शियल जहाजों पर हमलों में हाल के हफ्तों में बढ़ोतरी के साथ सामने आई है। कई देश इस रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षा में शामिल होकर इसके तरीके तलाश रहे हैं।

इसी के साथ नेपाल में बचाव कार्य में एक और अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में बचाव कार्य में एक और अपडेट आई है। नेपाल बचाव कार्य में लगे विशेषज्ञ ने कहा कि सुरंग के अंदर से लोगों की आवाजें सुनी गई। जी हाँ, बीबीसी नेपाली के मुताबिक त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बचाव कार्य में लगे विशेषज्ञ श्रीराम नेउपाने ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये पुष्टि हो गई है कि अंदर से एक अधिक लोगों की आवाजें सुनी गई। श्रीराम नेउपाने नेपाल के सांसद भी हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा कि जब बचाव दल ने कहा कि घबराओ मत, हम बचा रहे हैं, तो अंदर से जवाब हाँ था। उन्होंने पहले लिखा कि ये जानकारी बचाव कार्य में लगी सेना से मिली। उन्होंने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जॉइंट मैनेजर सुरेश राउत ने बीबीसी नेपाली को बताया कि त्रिशूली 3A प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर फंसे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने की सूचना मिली है। राउत ने कहा कि खोज और बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाले सेना के कर्नल गंगा बराल ने हमें सूचित किया कि अंदर से बचाव के लिए आवाज आ रही थी। नेपाली सेना ने बीबीसी न्यूज नेपाली को बताया कि बचावकर्मी सुरंग से 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी मलबे से बचते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। इससे पहले श्रीराम नेउपाने ने आज सुबह एक अन्य पोस्ट में लिखा कि नेपाल सेना और सशस्त्र पुलिस बल का बचाव दल सुरंग में प्रवेश कर चुका है और बचाव अभियान तेज कर रहा है। सुरंग के अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई देने की सूचना एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू।

एलिवेट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने एक और बहुत ही जबरदस्त चीज कर दी है, उन्होंने स्पेस में पहुंचा दिया है इंडिया का EOS-05 सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट क्या करेगा आइए जरा आपको वो बताते हैं। सो GSLV-F17 रॉकेट ने EOS-05 सैटेलाइट को एकदम सक्सेसफुली उसकी जो कक्षा थी यानी कि क्लास थी उसमें पहुंचा दिया है। और ये GSLV की 19th जो है वो उड़ान थी। इसरो के मुताबिक इस मिशन में 4 मीटर वाले कंपोजिट पोल एंड फेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक और सैटेलाइट जो है वो भेज दी गई है, लेकिन ये सैटेलाइट कोई नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो ये सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-05, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि इसका काम जो है वो स्पेस से अर्थ के तस्वीरें लेना और उस पर निगरानी रखना है। और ये एक बहुत ही बड़े एरिया पर निगरानी जो है वो रख सकती है। और इस मिशन की जो सबसे खास बात है कि EOS-05 जो है वो इंडिया का पहला ऐसा इमेजिंग सैटेलाइट है जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से तस्वीरें लेने वाला है, यानी कि फोटोज लेने वाला है। और अगर आपको थोड़ी आसान भाषा में समझाएं तो ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसी क्लास में रहेगा जहां से ये एक बड़े इलाके पर लगातार जो है वो नजर रख सकते हैं। जो है वो कम ऊंचाई वाली जो क्लासेस होती हैं या ऑर्बिट्स होती हैं उसमें घूमने वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके पर ही नजर जो है वो रख सकते हैं। और ऊपर से गुजरते समय, मतलब जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं, वहां पे ऑर्बिट कर रहे होते हैं, वहां पर तभी वो उसकी जो फोटो जो है वो ले सकते हैं। लेकिन EOS-05 जो है वो उसकी जो ऑर्बिट है उसे किसी इलाके को ज्यादा लगातार देखने की जो है वो कैपेबिलिटी देता है। मतलब वो सिर्फ घूमना नहीं पड़ेगा उसको, मतलब अगर उसे किसी जगह पर नजर रखनी है तो इसे उस एग्जैक्टली ऑर्बिट के ऊपर नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहकर भी, क्लास में रहकर भी किसी पर्टिकुलर और बहुत ही बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। मतलब इट डजंट हैव टू ऑर्बिट, मतलब उसे रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा इमेजेस लेने के लिए। एंड ये इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है। जी हाँ, या अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया इसके लिए। और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जिया दोस्तों, तो इसी के साथ आज सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी ही नहीं है बल्कि आज से ब्रिस्बेन फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है। जी हाँ, ब्रिस्बेन फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है वो आज से, यानी कि सितंबर 4 से 26 ऑफ सितंबर गा, और इसमें आप जा सकते हैं फेस्टिवल विलेज जो कि साउथ बैंक में है। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है कि कितना कुछ आपको इसमें मिलने वाला है और ये सच में बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल जो है वो रहता है और ये एक हाईलाइट है ब्रिस्बेन की। सो ऑफ कोर्स ये वीकेंड जो है वो आप ब्रिस्बेन फेस्टिवल में भी जा सकते हैं और अपने बच्चों को लेकर इनफैक्ट आप उसमें जा सकते हैं। इनफैक्ट कल यानी कि 5 सितंबर को एक फायरवर्क, मेजर फायरवर्क डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलने वाला है और साथ में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस यानी कि ADF का एरियल शो भी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, और सितंबर 9 टू 20 तक आपको रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड एम्फीथिएटर, और ये आपको लिटरली आउटडोर परफॉर्मेंसेस जो है वो दिखेंगी, आर्टिस्ट लाइक मिसी हिगिंग और साथ में द टेम्पर ट्रैप पनाउ एंड लेस हाउस, ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली ब्रिस्बेन फेस्टिवल इज हियर, मतलब सितंबर जब आता है तो एक ही चीज हमें हमेशा याद रहती है और वो है कि ब्रिस्बेन फेस्टिवल आ गया है, क्योंकि सितंबर आ गया है और आज से ब्रिस्बेन फेस्टिवल जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, इनफैक्ट आपको फिजियन फ्लाइंग सर्कस भी देखने को मिलेगी फ्रॉम सितंबर 17 to 20। ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें इसमें आप फ्री में भी देख सकते हैं लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको टिकट्स की जरूरत भी है, सो उसके लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है। बट द थिंग इज कि ये जो फेस्टिवल है जो कि रहने वाला है 4 से लेके 26 सितंबर तक, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, टेक योर किड्स, टेक योर फैमिली एंड या मजे से इन खूबसूरत नजारों का मजा लीजिए। जी हाँ, और ऑफ कोर्स कल का फायरवर्क डिस्प्ले बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट.

0: वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वुलन गैबा. ओपन डेली फ्रॉम 9 AM. टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com. द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब जो होने वाला है वो हमारा फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड. जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड जो है वो शुरू हो रहा है. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से पुराने गाने हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और पूरी तरह से हम आपको उस वाइब में लेकर जाने वाले हैं जो कि लिटरली आपको बहुत ही खूबसूरत फील करवाने वाली है. क्योंकि वो लिरिक्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत थे, वो कॉम्पोजिशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वो गायकी जो थी वो इतनी ज्यादा उम्दा थी कि आपको ऐसा लगेगा वाह, मतलब आज ऐसे सिंगर्स क्यों नहीं होते. सो ऑफकोर्स अगर आपकी कोई फरमाइश है तो जल्दी से उसे लेकर आ जाइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम. और पुराने गाने और पुराने किस्सों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेगमेंट की. जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास है, और ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो नायक है उनका है आज जन्मदिन. बहुत ही सेलिब्रेटेड और बहुत ही ज्यादा ब्लंट आर्टिस्ट वो हुए हैं. आप गेस कीजिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. एंड ये रहा गाना.

है तो आपको चाह ही गया होगा कि मैं किसके बारे में, ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, आज है उनका जन्मदिन और आज ही के दिन वो पैदा हुए थे कपूर खानदान में, राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के घर में। अब राज कपूर ने अपने बच्चों को हमेशा बहुत ही अच्छे से परवरिश दी, लेकिन एक चीज जो उन्हें सिखाई गई बचपन से वो थी बहुत ही ज्यादा हम्बल रहना है। मतलब अगर तुम राज कपूर के बेटे भी हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारे लिए इंडस्ट्री में एंट्री करना इजी रहेगा, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। ऑफ कोर्स उन्होंने बॉबी फिल्म में लॉन्च किया डिंपल कपाड़िया को, डिंपल कपाड़िया की माँ को, लेकिन यहां पर उन्होंने बेसिकली पूरी तरह से मेक श्योर किया कि उनके बेटे को कोई भी ज्यादा जो है वो ये ना मिले, ऐसा ट्रीटमेंट ना मिले जिससे लगे कि राज कपूर का बेटा जो है वो डेब्यू करने वाला है। और इसके बारे में बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बात की है कि जब भी वो राज कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम कर रहे होते थे तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे हैं। मतलब वो जैसा सबके साथ बिहेव करते थे वैसा ही उनके साथ भी बिहेव करते थे। और राज कपूर का फंडा हमेशा से रहा है कि अगर आप लोगों को काम करना है, सक्सेसफुल बनना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू अर्न दैट। बट इसके अलावा ऋषि कपूर और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस रहे हैं, और उसमें एक चीज थी क्या, वेल ऑफ कोर्स उनकी बेवाकी। मतलब उनके जो ट्वीट्स होते थे उनकी जो बेवाकी थी कि हाँ मतलब कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे, एकदम मुंह फट, लेकिन बहुत ही ज्यादा सच्चाई। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

मानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीतू सिंह ने भी कहा है कि कैसे ऋषि कपूर और वो जब दोनों डेट कर रहे थे तब भी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नोकझोंक होती थी। जी हाँ, मतलब जैसे हम सबको पता है कि ऋषि कपूर वॉज अ वेरी वेरी फन पर्सन और वो एकदम बेबाकी से बात करते थे, जो मुंह में होता था जो दिल में होता था वो उनकी जुबान पे होता था। नीतू जी कहती है कि मतलब इतना खतरनाक था बंदा कि रोमांस करने के लिए भी उनको बुलाना पड़ता था। एंड व्हेन आई से रोमांस, तब जब वो डेट कर रहे थे तो काफी उनकी नोकझोंक होती थी, काफी उनकी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि वो एक दूसरे से जो है वो काम कर रहे होते थे और उस बीच में जब वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे या फिर नीतू जी उनसे बात नहीं कर पाती थी तो वो नाराज हो जाती थी और फिर वो उनको बड़े ही फनी तरीके से जो है वो तंज कसते थे। और कभी कभार जो ऋषि कपूर है वो भी ऐसी चीजें करते थे, नीतू जी भी ऐसी चीजें करती थी। इनफैक्ट नीतू जी ने ये भी कहा है कि जब वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे तो वो ऋषि कपूर के लव लेटर्स जो है वो दूसरी अभिनेत्रियों तक पहुंचाती थी। जी हाँ, और फिर उसके बाद ऋषि कपूर को खुद ही समझ आ गया कि नहीं नहीं मेरे लिए तो नीतू जी ही बनी है। जी हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। ऑफ कोर्स उसके बाद उन्हें ये समझ आ गया कि ये सिर्फ डेटिंग तक काम नहीं चलेगा क्योंकि यही मेरी जीवन साथी, यही मेरी जीवन साथी बनने के लिए जो है, एंड दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड। ऑफ कोर्स उन्हें बहुत सारी चीजों से जो है वो प्रॉब्लम भी थी, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी अपने नाम से जो कि था चिंटू। जी हाँ, उनको ऐसा लगता था कि क्यों मेरा नाम चिंटू रख दिया है। और अपने करियर के स्टार्टिंग में उनको डायरेक्टर जो है वो सीधा ऋषि कपूर के नाम से नहीं बल्कि चिंटू के नाम से बुलाते थे, उनको बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर वो करते ही क्या, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका नाम जो है वो चिंटू रखा था। जी हाँ, ऋषि कपूर ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की हैं लेकिन उनके अंदर विजडम भी बहुत ज्यादा था। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे उन्हें पता चल गया था 20-22 साल अपने करियर में काम करने के बाद कि अब वो हीरो मटेरियल नहीं रहे हैं, अब जो है वो एकदम माचो मैन, एकदम मसल्स वाले हीरोज की जो है वो आगमन हो गया है, उनकी एंट्री हो गई है और ये उनकी एरा है। जी हाँ, एंड दैट्स व्हेन ही रिटायर्ड एज अ हीरो, द सेंट्रल कैरेक्टर। जी हाँ, और ये चीज उन्होंने कही कि मुझे पता चल गया था कि मैं जो रोमांटिक मूवीज करता था, मैं थोड़ा चबी था और मुझे पता था कि ये एरा जो है अब मेरी खत्म हो गई है क्योंकि उसके बाद जो है वो एकदम मसल्स वाले हीरोज की एंट्री होनी शुरू हो गई थी और डेफिनेटली मेरे पास तो मसल्स थे नहीं, तो मुझे पता चल गया था कि मेरी एरा अब खत्म हो रही है एज अ हीरो, बट उसके बाद भी मैंने काम किया। लेकिन ये विजडम होना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जी हाँ, ये गाना अब आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा भी लेने वाली हूँ, जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी कल टॉप 10 हॉट 10 में। अगेन हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सबको, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कृष्ण भगवान आपके घर में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी वेल्थ, बहुत ही अच्छी हेल्थ लेकर आए और आप लोगों पर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही हम आपके लिए दुआ करते हैं। इसी के साथ बाय बाय, सी यू टाटा। लास्ट सॉन्ग अगेन ऋषि कपूर साहब का क्योंकि आज है उनका बर्थडे, एंड दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड। ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 04886234599 या बीरेंद्र सिंह ऑन 04093905833 या फिर बाबा ऑन 04137016511।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे

ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज आज यानी 4 सितंबर से ब्रिस्बेन का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। अगले 23 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 2000 से अधिक कलाकार 750 से भी ज्यादा लाइव परफॉर्मेंसेस देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 70% से ज्यादा इवेंट्स आम जनता के लिए पूरी तरह मुफ्त हैं। वहीं साउथ बैंक में फेस्टिवल विलेज बना आकर्षण का केंद्र। फेस्टिवल के उद्घाटन के साथ ही साउथ बैंक का वर्सो प्रोजेक्ट फेस्टिवल विलेज लोगों से गुलजार हो गया है। जी हां, आज शाम यहां मैजिक मिरर्स स्पेगल्टन में मशहूर लंदन शो द क्वायर ऑफ मैन का प्रीमियर होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं ब्रिस्बेन सिटी हॉल कॉन्सर्ट्स की विशेष सीरीज लॉर्ड्स मेयर एड्रियन श्रिनर ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान ब्रिस्बेन सिटी हॉल में दोपहर के समय 4 विशेष कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्थानीय संगीतकार साइलेंट फिल्म स्क्रीनिंग और लाइव परफॉर्मेंसेस मुफ्त में देखी जा सकेंगी। वहीं साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज ब्रिस्बेन और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के तटीय इलाकों के लिए हल्की से मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं ब्रिस्बेन ब्रोंकस की डिजिटल और कमर्शियल विस्तार योजना। ब्रिस्बेन की प्रसिद्ध रग्बी टीम ब्रिस्बेन ब्रोंकस ने अपनी FY26 की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए नए डिजिटल मीडिया और फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं नेबरहुड पावर्स में ब्रिस्बेन सेरेंडिस की शुरुआत। ब्रिस्बेन के निवासियों के लिए संगीत अब उनके घर के करीब पहुंच रहा है। फेस्टिवल के तहत मुर्रुका ब्लॉक पार्टी और मैनली सेरेंडिस जैसे कार्यक्रम स्थानीय पार्कों और उपनगरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले इसरो का बड़ा धमाका, इमेजिंग सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज इतिहास रचते हुए देश की पहली एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जियोस्क्रोन्स ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस का फेस रिकॉग्निशन विवाद। दिल्ली पुलिस की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT को लेकर आज एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जंतर मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान इस सिस्टम ने जिन 25 लोगों को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया था, वे सभी उस वक्त पहले से जेल में बंद थे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूक्रेन दौरा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यूक्रेन के दौरे पर हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेता रहेगा। वहीं OpenAI ने लॉन्च किया GPT-6 अस्त्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। OpenAI में अपना नया मॉडल GPT-6 अस्त्रा लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह नया AI मॉडल सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि कंप्यूटर पर इंसानों की तरह कई कदम वाले जटिल काम खुद पूरे कर सकेगा। इसके साथ त्योहारों से पहले महाराष्ट्र खाद्य विभाग सख्त। आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने आज से पूरे राज्य में एक नया सेफ्टी कैलेंडर लागू कर दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में महिला पत्रकारों का प्रदर्शन। दिल्ली में आज महिला पत्रकारों के एक समूह ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि हालिया कवरेज के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले नेपाल बाढ़, राहत कार्य तेज, भारत ने भेजी मदद। नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों के जरिए आज 21 टन से अधिक राहत सामग्री काठमांडू पहुंचाई गई है। वहीं टेक वर्ल्ड में बड़ी डील, एनविडिया खरीदेगा हगिंग फेस। जी हां, ग्लोबल टेक मार्केट ने से आज बहुत बड़ी खबर आई है। दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनविडिया ने AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस को लगभग $13 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया है। वहीं न्यू दिल्ली में क्वाड शेपास की अहम बैठक, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और नई तकनीकों के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतियों पर सहमति बनी। वहीं अमेरिका में जनजात नागरिकता पर कोर्ट का रोक, अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं बेल्जियम और भारत के बीच बढ़ा रक्षा सहयोग, भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा संबंधों को नया मोड़ मिला है। भारत ने ब्रसेल्स में अपना पहला डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। वहीं इजिप्ट में भीषण सड़क हादसा, मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन। महिला एशिया कप में भारत की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने हांगकांग के खिलाफ शानदार 124 रनों की पारी खेलकर पूर्व कप्तान मिथाली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं महिला एशिया कप भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगकांग को 137 रनों के विशाल अंतर से हराकर महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं स्पेनिश फुटबॉलर मार्कोस लॉरेंटे का संन्यास, और एटलेटिको मैड्रिड के स्टार मिडफील्डर और स्पेन के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी मार्कोस लॉरेंटे ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं चाइना मास्टर्स बैडमिंटन, सात्विक चिराग और किदांबी श्रीकांत चमके। चीन में चल रहे चाइना मास्टर्स सुपर 750 में भारत के किदांबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज का बड़ा बयान, टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन मैच में के दौरान बिजी टेनिस कैलेंडर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए साल भर बिना ब्रेक के सारे टूर्नामेंट खेलना शारीरिक रूप से असंभव होता जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो
1: ब्रिस्बेन। क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बेरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Kehdu tumhe,
4: haan,
5: ya chup rahu,
4: na,
5: dil mein mere aaj kya hai?
4: Kya hai?

0: Radio Briswani se.
1: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हाँ तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश ओलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडा ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चालक दे नाल तुसीं बने होए हुण। इहना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाइयां होईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां ते इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा है बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंगे फिल्म दा नाम। ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म दा अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे दी कहानी है जो अपने पिता दी तलाश विच निकलदा। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: करे ना हो।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने हम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान, नीरज घायवान दी डेब्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विक्की कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विक्की कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
5: Nobody else.
6: Hey, Sean.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस्सनी है, वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

इन द हाउस हाउस जी देखो वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल एफ आई PRESCI अवार्ड मिलिया है। अल्फोंसो कोरान हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गिरे। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बिरसवानी 101.1 फेसबुक पेज है जी बिरसवानी @bersawani.com ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर गलबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: ब्रिसबेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticketsco। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Yeah.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री।

0: इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक of Mahmood Jaffy and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

ऋग्वेद, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
4: Chaldi chaldi chaldi chaldi late ho gaya. Le bhai chabi.
5: Sir, on stage 5 minutes.
4: ओके, तुम आ रही हो? मैं जाऊं? लगता है रूम में रह गए।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज लहंगा सलवार कमीज पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस इतना ही नहीं ओरिजिनल डीवीडी सीडीज फोन कार्ड्स प्रीपेड चार्ज कार्ड्स फैंसी ज्वेलरी बैंगल्स गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वुलन गैबा ओपन Daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Sargam Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: सच है कुछ भी नहीं।
1: ये मित्रों, आप रेडियो ब्रिजवानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और एक गीत याद आ गया तो इसलिए सोनू निगम जी का गाना यहीं पर मैं रोक रहा हूं। चलें हम आगे जगजीत सिंह जी के साथ और फिर आई बरसात का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

जय मित्रों, ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। ये मैं क्यों बजाया हूँ, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं और समय का कदर नहीं करते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं इसे बजा देता हूँ आपके लिए, ताकि आप सुबह उठकर विचार कर लें कि हमें क्या करना है, कैसे करना, क्यों करना है और क्या मेरे साथ जाएगा क्या नहीं। तो मैं हूं परमानंद, संगीत सरगम प्रोग्राम का शुरुआत करने जा रहा हूं, ये उम्मीद के साथ कि आप ठीक 6:30 बजे से 8:30 के बीच मेरा साथ देंगे।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम समाप्त।

तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। आज शनिवार 5 सितंबर सन 2026 है, बहुत खूबसूरत सा मौसम है। और साथ में आपको बोल दूं, एक भेंटवार्ता मैं लेकर आऊंगा 7:45 बजे, और ये रहेगा बोंदिता चक्रवर्ती जी के साथ, और ये रहेगा आने वाला जो एक लोकप्रिय संगम एकेडमी द्वारा एक प्रोग्राम जो पेश करेंगे यहाँ ब्रिस्बेन में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम देते रहेंगे। और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो का नंबर है 3279-1701, और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। 25 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में, और मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने हमें निम्न खबर प्रदान किए हैं जो अब आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। आज ब्रिस्बेन इप्सविच सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में धूप निकलेगी, और सुबह से मौसम बहुत प्यारा है। लोग बहुत जल्दी घाट छोड़ देते हैं क्योंकि अब सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, यानी सूर्य की किरण दिखाई लगती है। 5:33 पर सूर्य उदय हुआ है और 6 बजे सूर्य अस्त होगा। हवा का रफ्तार ब्रिस्बेन में 11 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। गर्मी रहेगी, 29 रहेगा अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 16। और इप्सविच में इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 32 दिन में रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 10। सनशाइन को इसमें थोड़ा ठंड है, यहाँ 24 रहेगा दिन में रात्रि को 18, हवा का रफ्तार भी 18। और गोल्ड कोस्ट में 27 दिन में रात्रि को 14, हवा का रफ्तार 13। नैनी में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, और यहाँ पर आपको 28 रहेगा दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 18। 6:15 सूर्य उदय होगा और 6:03 पर सूर्य अस्त होगा। लंबासा में बारिश होती रहेगी, 29 रहेगा दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 13। सुबह में बहुत ज्यादा ठंड है, बारिश होने के साथ साथ 24, दिन में रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 21। ओकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं, जहां पर कहते हैं भाई धूप निकलेगी, 17 दिन में रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 19। 6:35 सनराइज, 6:04 सनसेट। वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 13 दिन में रात्रि को 10, एंड वेरी विंडी, 47 किलोमीटर पे आवा। चलो भाई मुंबई ले चलते हैं, जहां ज्यादा धूप निकलेगी, 30 दिन में रात्रि को 26, हवा का रफ्तार 18। और अमृतसर में धूप निकलेगी, 33 दिन में रात्रि को 24, हवा का रफ्तार 8। और बड़ी बारिश नई दिल्ली में होगी, 26 दिन में रात्रि को 24, हवा का रफ्तार 11। 6 बजे सूर्य उदय होगा और 6:40 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और चलो आगे बढ़ते हैं। भैया भाई नमस्कारम, आपने सुबह सुबह कॉल किया, और क्या बोलूं मैं, प्रोग्राम बहुत तड़के से सुन रहे हैं आप। मेरा दोस्ती पुरानी है, बचपन का है, और एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मौसम का खबर तो आप सुन लिए मित्रों, और याद रहे जो भेंट वार्ता के बारे में मैंने कहा हूँ, ये रहेगा सरगम म्यूजिक एकेडमी के बोंदिता चक्रवर्ती जी के साथ, और 7:45 हमें लेकर आएंगे आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका स्वागत करते हुए चलें। पहला जो गीत है आज मौसम के साथ साथ जुड़ा हुआ है, लता मंगेशकर जी और प्रोफेसर SP बाला सुंदरम जी का आवाज में ये लोकप्रिय गीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: जी मित्रों, ये था हम आपके हैं कौन फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय दो गाना, और हम आगे बढ़ते हैं। जबकि घड़ी की तरफ देख रहा हूं तो वही 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। एक विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों चलें सुनते हैं ये।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is Grand Kirtan Night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हुए चलें। एक और ड्यूट है उदित नारायण जी और साथ में कविता कृष्णा मूर्ति जी, प्यारा सा गीत लेकर उपस्थित हुए हैं। तुम जो सनम हंस के

0: जो मित्रों बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, आप सुन रहे थे और हम आगे बढ़ेंगे। घड़ी भी देख रहा हूँ, 13 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में। आप परमानंद के साथ हैं, चले एक खबर के साथ हम आगे बढ़ें।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: जी मित्रों, आप विज्ञापन सुन रहे थे और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, आपने कॉल किया, राम राम आपको। और सुबह से आप तड़के उठकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और चलो आगे बढ़ते हैं, दिल जाने जिगर तुम पे प्यार किया, क्या बात है। कुमार सानू साहब अलका जी के साथ आनंद लीजिए।

0: जो मित्रों प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत खूबसूरत सा दोगान आप सुन रहे थे। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम भाई क्या मैं बोलूं, आजकल क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती है और आंख खुल जाता है तो इसीलिए बहुत लोग जुड़ जाते हैं सुबह सुबह प्रोग्राम में। धन्यवाद है, मैं हूं परमानंद, आपका स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर।
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
0: Digicel का विज्ञापन के बाद आगे चलें भाई, क्या बात है? किसी मन चले पे जो दिल आ गया, क्या बात है? प्रदीप भाई आप तो जाग गए, केम छो, सुनते हैं ए मजेदार गीत।

0: Every great business starts with an idea. The real magic.
1: तो मित्रों, ये गीत था जो समाप्त हुआ, और गीत के साथ साथ घड़ी बोल रही है, क्या बात है भाई, बस 2 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, तो एक खबर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पुराने गीतों की तरफ आपको लेकर चलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस डॉक्टर कुमार का विज्ञापन के साथ।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: तो मित्रों, बस साथ
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
1: और मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 7 माइल रोक्स ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। शनिवार के सुबह है, 5 तारीख सितंबर है और 7 बज चुके हैं हमारे यहाँ। चले मौसम पे एक बार फिर नजर डालते हैं। सिर्फ साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए धूप निकलेगी आज हमारे ब्रिजबेन में, और तापमान ब्रिस्बेन में 29 रहेगा दिन में, और इप्सविच में 32, सनशाइन कोस्ट में 24 और गोल्ड कोस्ट में 27। तो ये कुछ मौसम का खबर था। और रात्रि के समय विश्राम करने के लिए बहुत बढ़िया तापमान है, 13 से लेकर 16 डिग्री साउथ ईस्ट में। और एक बात और बतला दें आपको कि एक भेंटवार्ता हम लेकर आएंगे 7:45 और आज कुछ बातें हम करेंगे फाउंडर ऑफ सरगम म्यूजिक एकेडमी की बोंदिता चक्रवर्ती जी के साथ। तो आप सुनते रहिएगा, और थोड़े देर में पुराने गीतों के अंदर अंदर हम लेकर आएंगे राव जी को। तो चलें आज का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही लोकप्रिय पुराने गीत का। मोहम्मद रफ़ी साहब इसे अदा कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम बयां करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं, बयां नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में शायद गीत हो उसका सहारा लेकर बड़ा आनंद से, आसानी से हम अपना दिल की बात किसी के सामने कह देते हैं, खासतौर से जब कोई महफिल हो। तो चलो रफ़ी साहब शुरुआत करेंगे आज पुराने गीतों का कार्यक्रम का। पहला गीत बोलूंगा नहीं कौन सा है, इंगटे भाई आपको जोड़ रहा हूँ इस गीत में।

जी मित्रों, क्या बात है, व्हाट अ पावरफुल सॉन्ग बाय रफी साहब। ऐसे होता है ना, जब प्यार हम किसी से करते हैं और रिश्ता हाथ से छूटने वाला होता है, तब ऐसे ही यादें आते हैं अंदर अंदर, और फिर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन एक काम करना दोस्तों, शराब का सहारा कभी मत लेना, क्योंकि शराब पीने से आपका सेहत बिगड़ती है। तो याद रखिए ये बातें, और बाकी तो मालिक के ऊपर हम छोड़ देते हैं। कभी बोलते ना, कोई आपका इच्छा अगर सही हो अंदर से अंदर, तो वो मालिक समय निर्धारित करते हैं, फिर सब कुछ होता है। तो ऐसे ही चिंता ना करें। कहते ना, भोला भटका शाम का, सुबह भी जब याद आएगा तो आ जाएंगे। प्यार ऐसा चीज, जब अगर आपके प्यार में इतना ताकत है, तो चाहे बोलते ना देवानंद साहब का डायलॉग आता, चाहे धरती फूट जाए, चाहे आसमान टूट जाए, लेकिन तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, वो बोलता। तो यहां अगर दिल की उमंग सच्ची हो, तो कोई ना कोई रिश्ता जो टूटने वाला है, टूटते टूटते बच भी जा सकता है। तो चलो अगला गीत, अपने हुए पराए, 1967 की फिल्म, कोई बुलाए और कोई आए, मनोज जी मुकेश जी के गीत के साथ।

0: या मित्रों कोई बुलाए और कोई आए फिर दिल चाहे प्यार। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी के आवाज में और इसी के साथ ही 7:11 हो रहे हैं रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में। हम आगे बढ़ते हैं विज्ञापन के साथ, चलिए इसे सुनते हैं, फिर पुराने गीतों का एक और मजेदार गीत आपके लिए पेश करूंगा।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: अब समय हुआ फिल्म यकीन का गीत का, गर तुम भुला ना दोगे, सुनते हैं जी।

0: जय मित्रों, अगर तुम बुलाना दोगे, प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। चलें एक और खबर हम सुनते हैं और पुराने गीतों में एक और गीत, उसके बाद लेकर आएंगे राव जी को।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: 17 मिनट हुए हैं 7 बजकर और पुराने गीतों में अगला गीत लता मंगेशकर जी द्वारा अदा किया गया है और बहुत एजस शब्द लिखे जाते हैं ना, दिल को कभी रुलाते हैं, तड़पाते हैं, बहुत कुछ याद दिला देते हैं। तो सुने गीतकार ने कैसे गीत को रचा।

0: मित्रों, अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म आप सुन रहे थे। कारण बस शायद आज राव जी नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए उनका हम भेंटवार्ता लेकर आने में असमर्थ हैं। तो चलो आगे एक विज्ञापन सुनते हैं और एक कवाली लाइनअप किया हूँ आपके लिए, वो बजाना है। तो चलें एक खबर के साथ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: मित्रों, इस समय 23 मिनट हुए हैं 7 बजकर, और परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक कवाली लाइनअप किया हूँ बहुत दिनों के बाद, इसे इसमें आजाद साहब अदा करते थे। तो चलो आज सुनते हैं इस लोकप्रिय कवाली को, जो कवाली में दिलचस्पी रखते हैं उनको और बाकी लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा।

0: आइए और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए।
1: ओ पिछोले भाई आ गया ये। अरे भाई हमारी शादी की खुशी में अधूरी कव्वाली पूरी तो सुन जाइए।

0: जय मित्र, ये जो आपका वाले सुन रहे थे ये था फिल्म अल हिलाल का 1958 में रिलीज की गई फिल्म का, ये बहुत ही लोकप्रिय, हमेशा लोकप्रिय रहा है और रहेगा। तो देखिए क्या बात है, कमाल का कवाली था, अच्छा लगा मुझे, आपको भी अच्छा लगा होगा।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: मित्र ऑपरेटिव ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो के घड़ी में, बस 7:30 बजने वाले हैं और इस समय क्या होता है, जन्मदिन की खबरें होती हैं। तो आज जन्मदिन का खबर जो है, पहला तो मेरे दोस्त वेंकैया नायडू जी, उनकी पत्नी के ग्रैंड सन यानी कि कृष्ण गांडर जी का 22nd जन्मदिन है। इस खूबसूरत अवसर पर वेंकैया जी अपने पत्नी के साथ और साथ में बहुत सारा आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं, उनके ताता पति और उनकी माता जी सुगंध माला जी और उनके पति पिता अतीश गांडर जी। तो फ्रॉम मम एंड डैड माला जी एंड अतीश जी, ये बच्चा मैं छोटे से इसको जानता हूँ, एंड यू गाइस लुक आफ्टर हिम वेरी वेरी वेल। और साथ में कृष्ण वेंकैया जी, आप अपने पत्नी के साथ इनके बहुत सेवा वगैरह किए हैं, अब तो बड़ा हो गया भाई, 22 साल का है आपका ग्रैंडसन कृष्ण। बहुत सारी आशीर्वाद मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से। मित्रों एक और खासियत की बात है, इनकी पैदाइश कृष्ण जन्माष्टमी के समय ही हुआ है, तो कृष्ण भगवान का इनके विशेष कृपा हो। इसके साथ साथ जो लोग अपना जन्मदिन आज मना रहे हैं उनको हम याद कर रहे हैं, आपका भी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शादी की सालगिरह जिनकी आ रही है, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, मालिक से ही प्रार्थना कि आपके जीवन में ऐसे दिन बार बार आते रहें और खुशी खुशी अपने जीवन को आप व्यतीत करें। और लोगों का मैसेजेस भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और चलो आगे बढ़ते हैं, पुराने गीतों में एक और गीत बचा था और ये गीत आन मिलो सजना का है। ये गाना मैं जब जब बजाता हूँ ना तो मुझे अपनी पुरानी एक बात याद आ जाती है। जो लोग फिजी से हैं, लंबासा से या सॉरी सुबह से हैं, उनको मालूम होगा, या लंबासा से हैं, लंबासा ले चलेंगे, जहाँ पर शुगर मिल आपको मालूम है, कोने पर ऐसे बैंड है रास्ते में। तो मेरे साथ एक बंदा, उन दिनों की बात है, उनका नाम था राम बरन जी, वो हमारे बॉस हुआ करते थे उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो उनके साथ, क्योंकि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस हुआ करता था उन दिनों, तो मैं उनके साथ जाता था, बैंक से पैसा निकाल कर कर्मचारियों को बांटना होता था तो बंदूक लेकर जाना पड़ता था। तो ये थे पे मास्टर इंचार्ज। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो इन्होंने अचानक बोला कि मुझे सनी बॉय बोलता था, बोलता सनी बॉय जा तो रहे हैं बैंक, लेकिन कागज पत्र सब बैंक का जो था ऑफिस में ही भूला है। तो मुझे बोला, तो उनका खुद बोला था कि आन मिलो सजना, सनी चलो घुमाओ गाड़ी, चलते हैं वापस। तो एक गाना याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो भाई क्यों ना हम इसे आपके लिए बजा देते हैं, और पुरानी यादें हमारे हैं ताज़ा हो जाएंगी और आपका भी यादें जो है बहुत सारी वो ताज़ा हो जाएंगी। रंग रंग के फूल खिले कोई आए मेरे अंगना, रफ़ी जी आशा जी के साथ।

0: जय मित्रों, आनंद मिलो सजना, ये बहुत ही लोकप्रिय गीत था जो भी आप सुन रहे थे। और यहाँ पर जूनियर महमूद साहब दौड़ कर घर पर जाते हैं, जो गीत समाप्त नहीं हुआ था कि जाकर वहाँ बतला दें सबको कि भैया मीनो बाग में कुछ और गा रहे हैं और पूछिएगा। तो ये सब उस समय की बात थी जब कॉमेडी फिल्म्स बनते थे, उनमें बहुत सारे मिक्सअप थे, इनके गीत और सब कुछ स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया था।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: और मित्रों, इस समय 21 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नमक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। 7:45 के आसपास हम एक भेंटवार्ता लेकर आएंगे और उसके बाद 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। फिलहाल चलते हैं आपके मनोरंजन के लिए, ढूंढे अखियां एसर और अल्तमेश इस गीत को अदा कर रहे हैं।

जी मित्रों, नैने से नैना टकराए, ढूंढे आंखें, आप सुन रहे थे एक और गीत है, इसके बाद हम भेंट वार्ता लेकर आएंगे। तो चलो सुनते हैं इस गीत को, फिर हम आगे बढ़ेंगे।

0: तो मित्रों, आप दिशम मूवी का लोकप्रिय गीत को सुन रहे थे और हम चलते हैं आगे। आगे चलते हुए विज्ञापन की तरफ आपको ले चलता हूं और ये विज्ञापन, इसके बाद भेंटवार्ता।
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स. For tickets, contact 04227.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और
1: मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक अब समय हुआ वो भेंट वार्ता का, और ये रेडियो ब्रिजबानी है, और हमारे श्रोतागण को ये बतला दूं कि आज मैं परमानंद बोंडिटा चक्रवर्ती जी से, जो फाउंडर ऑफ सरगम म्यूजिकल एकेडमी है, कुछ बातें करने जा रहा हूं। और उनको खास तौर से क्यों वो रेडियो पर आई हुई हैं, क्योंकि उनके एक बहुत ही बेहतरीन शो आने वाला है। तो बोंडिटा जी, रेडियो ब्रिजबानी पर हम आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परमानंद जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ब्रिजबानी। थैंक्स फॉर हैविंग मी दिस मॉर्निंग।
1: इट्स अवर प्लेजर, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं समाज के सेवा के लिए भी कर रहे हैं। तो चलो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, पहला कि आपने सरगम म्यूजिकल एकेडमी क्यों स्थापित की है?
2: राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, छोटे से ही मुझे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट ए लाइफ पार्टनर मिथुन, हु इज इक्वली, और बोल सकते हैं कि म्यूजिक के प्रति उनका इंटरेस्ट मुझसे भी ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश समथिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इन स्पेशली इन ब्रिस्बेन, सो दैट वी कैन ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ दिस इंडियन आर्ट ट्रेडिशन हेरिटेज थ्रू द मीडियम ऑफ म्यूजिक टू द यंगर जनरेशन इन द ब्रॉडर कम्युनिटी। एंड अगेन फॉर्चुनेटली एनफ आई हैव बीन ब्लेस्ड विद टू गर्ल्स जिनको म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो सरगम म्यूजिक एकेडमी हमने एस्टेब्लिश किया था इन 2014, यू नो, एंड इट्स अ मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द फॉस्टरिंग द लव ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, जैसे मैंने बोला, अमंग यंगर जनरेशन, एंड नॉट ओनली यंगर जनरेशन, इट्स फॉर पीपल फ्रॉम ऑल एजेस एंड फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड। And one of the main initiatives of this music academy is जो हमारे recent Nepal flood victims में जो sufferer हुए हैं, one of the motives is to support these causes by raising funds through our annual concerts that we do every year.
1: अच्छा जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे shows लेकर लोगों को मनोरंजन कराए हैं, तो बतलाइए कि आपका कौन सा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आने वाला है ब्रिस्बेन में?
2: सो अपकमिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट इज ऑन द 12th ऑफ सितंबर, सैटरडे, वेयर वी विल पे ट्रिब्यूट टू टू मोस्ट बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर्स, मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले जी। As we all know, we have lost Asha Bhosle ji recently. So we want to give a tribute to all her musical melodies. And we thought this is the best platform to do it. Aap is pe dekh sakte ho, it's not just a musical evening. People, it's a different musical production where you can see people from different ages, from different backgrounds. They will come and perform with the live band. So at Sargam Music Academy, Pramanandaji, what we do is we try to bring people's dream into reality. So humne socha ki ye event hum karenge, which is the Golden Voices, a musical tribute to Mohammad Rafi and Asha Bhosle. This will be held at the Forest Lake Community Lighthouse Community and Event Center. So you can get your tickets from Tri-Booking. And it's located, I'll give you the address, it's 65 Uguru Street, Ellen Grove, Forest Lake.
1: कमाल की बात है। और ये बतलाएं, इस शो के एंट्री कितनी होगी?
2: एंट्री, द टिकट प्राइसेस आर फ्रॉम $20, एंड देयर विल बी फूड कैटर्ड फॉर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आप आ सकते हैं, वहां पे चाय पी सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, यू कैन नेटवर्क विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, देयर विल बी एम्पल ऑफ पार्किंग। सो जस्ट कम ड्रेस्ड इन योर बेस्ट बॉलीवुड outfit and join the musical live performance with us.
1: अच्छा जी, आपने शायद कुछ जो अगला सवाल का जवाब दे ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि जो बुनीता जी इस रफ़ी और आशा जी का जो म्यूजिकल नाइट आप आयोजित किए हैं, इसमें संक्षिप्त से बताइए कि उस इवनिंग का प्रोग्राम क्या रहेगा?
2: The evening will start with bhajan and then we will have all the performances lined up. We have made a beautiful lined up of performances right from jaise maine bataya ki bachchon ke performance rahenge wahan pe, hamare live band rahenge, Mithun and I will be singing with the finest local singers and the musicians. Hum rehearsals kar rahe hain so that we can bring the best of the Bollywood evergreen songs. आप आइए वहां पे, आप आके वहां पे देखिए, आप सुनिए, आपको it will take you back to those golden era, you know, where we have learned everything. आजकल के दिन, आजकल के गाने it's all inspired from मोहम्मद रफी जी के गाने से, आशा भोसले जी के गाने से. सो वी विल सेलिब्रेट द टाइमलेस मेलोडीज ऑफ टू ऑफ दिस मोस्ट लेजेंडरी वॉइसेस. तो प्लीज आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ दिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट विथ ए वेरी गुड कॉज. एंड टिकट्स एज आई सेड इट्स फ्रॉम $20. So please, I would request everyone to come and attend the musical concert. We have got a lined up of variety of performances. I'm sure everybody will enjoy.
1: अच्छा, और इसमें कोई local singers भी होंगे?
2: Yes, इसमें locals. This entire program is by the local performers.
1: Okay.
2: हम तो बाहर से performers लाते हैं हमेशा, but this is a platform where we are bringing all the local performers and they have rehearsed really well. They are doing a great job to put up a great event for you. So none of you will be disappointed. So आइए, मैं गाना गाऊंगी, मिथुन गाना गाएगा, my kids will sing, my students will be performing.
1: That's great. अच्छा, ये जो food stalls आप बोल रहे हैं, तो यहाँ मांसाहारी शाकाहारी दोनों भोजन मिलेंगे, हलाल भी रहेगा?
2: सब रहेगा यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी. आपके लिए वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, हलाल फूड, आपको इंडियन मसाले चाय सब कुछ मिलेंगे.
1: That's great. अब मसाले चाय बोले तो वन ऑफ माय फेवरेट्स मसाला चाय के बारे में ना, तो
2: मेरा भी फेवरेट है मसाला चाय. मैं जब सुनती हूँ मसाला चाय, आई जस्ट गो फॉर दैट.
1: वनिता जी, आप बहुत सुरीली आवाज है, एक छोटा सा कुछ गुनगाएंगे हमारे लिए, श्रोतागण के लिए?
2: अच्छा ठीक है, तो मैं छोटा सा एक लाइन गाती हूँ जो आई थिंक आप सभी को आना चाहिए, बिकॉज लुक, वी डोंट नो व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर अस, है ना, विद ऑल द अनसर्टेनिटीज इन लाइफ. सो प्लीज आइए हमारे कॉन्सर्ट में, प्लीज ज्वाइन अस, अपने खुद को एंटरटेन कीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल वेलबींग. मैं हमेशा यही सोचती हूँ, यू नो. सो आई जस्ट सिंग टू लाइन्स.
1: यस,
2: आगे भी जाने न तू

0: So please come and enjoy. Please give yourself that entertainment. You know, आप खुद को दे सकते हो this gift. So gift yourself with a musical night with Sargam Music Academy and us, and we are looking forward to seeing you all.
1: जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने कही है. आई एम वेरी वेरी प्राउड कि आपकी आवाज बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत है, और मिथुन जी का भी सेम होगा. आई थिंक आई हैव हेड योर कॉन्सर्ट, को भी याद कर रहा हूँ कहाँ पर. लेकिन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप बड़े संख्या में आए, क्योंकि खास एक शो ही नहीं मगर यहाँ पर जो पैसा उगाया जाएगा, ये जो नेपाल में बाढ़ वगैरह आई हुई है जहाँ बहुत लोगों की निधन हुई है, कुछ पैसा वहाँ भी जाएगा और उनके भाई हेल्प होगा. तो प्लीज़ शनिवार है, मौसम बहुत प्यारा रहेगा मुझे मालूम है, और जो होल है मैं मुझे मालूम बहुत अच्छी तरह से होल, पार्किंग का कोई भी चिंता नहीं है, आप रास्ते पर खड़ा कर सकते हो, पीछे दो तीन लोकेशन है जहाँ पर आप पार्क कर सकते हो. 65 उगुरु स्ट्रीट एलन ग्रोव, ये फॉरेस्ट लेक के रास्ते में है, बस आप उगुरु स्ट्रीट नीचे चले जाएं, दाएं मुड़ेंगे, अगर आप फॉरेस्ट लेक शॉपिंग सेंटर की तरफ से जा रहे हैं तो दाएं पर ही है, और खान पान का भी प्रबंध है, सब कुछ है, बच्चे भी आ सकेंगे. तो अंत में आपने तो कह ही दिया जो कहना था, लेकिन एक बार फिर दोहराएंगे कि ये शो जो है माहौल है, कितने देर तक ये शो चलता रहेगा उस दिन या रात को?
0: The gates will open from 5:30 और हम शो स्टार्ट करेंगे शार्प एट 6 o'clock. तो शो स्टार्ट होगा 6 o'clock एंड देन 7:30 देयर विल बी एन हाफ एन आवर ब्रेक फॉर अ क्विक डिनर ब्रेक. उसके बाद विल स्टार्ट अगेन एंड देन इट विल फिनिश अराउंड 9:15. सो सेकेंड हाफ ऑफ द शो इज मोस्टली ऑल द फास्ट नंबर्स एंड द डांस नंबर्स. सो प्लीज कम प्रिपेयर्ड. आप लोग को वहां पे सबको नाचना भी है, खाने के बाद थोड़ा नाचने से वेट भी मेंटेन होते रहेगा. सो वी थिंक अबाउट एवरीथिंग, सो प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ इट.
1: इसीलिए ना रफी साहब आशा जी का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई.
0: बिल्कुल बिल्कुल देखिए.
1: वंदिता जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने शो के बारे में लोगों को जागृत किए हैं, और यही उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर लोगों से प्रार्थना या निवेदन भी कर रहा हूं कि आप जाइए, ऐसे जो खास मकसद के लिए जो प्रोग्राम्स रच रहे हैं और प्रोत्साहन भी दे रहे हैं लोगों को, हमारे उभरते हुए कलाकारों का, कि भाई कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए जीवन में, हंसी मजाक करके अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए. सो गुड लक टू यू वंदिता जी, और साथ में जितने भी श्रोता गणे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, टिकट के लिए आपको याद है कहाँ है और फोन नंबर है, अगर और जानकारी प्राप्त करना है तो वंदिता जी से 04227358999 पर आप कॉल कर सकते हो. ब्रिजवानी सुनते रहिएगा. विज्ञापन अभी मैं एक बार फिर बजाऊंगा आपके लिए, और पता इन्होंने पहले कह दिया है कि 65 गुरु स्ट्रीट एलन ग्रोव में आप जाइए, नेविगेशन में डालोगे तो वहीं ले जाकर उतारेंगे आपको. तो विद दोज वर्ड्स वंदिता जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन रेडियो एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट योर शो. गॉड ब्लेस यू. और कुछ कहना है जाते जाते?
0: नहीं, थैंक यू वेरी मच रेडियो ब्रिजवानी और आपको भी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू मैं बोल सकूं आप सभी को. बस इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप लोग सब आइए, एंजॉय कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू. नमस्कार जी.
0: नमस्कार.
1: तो मित्रों ये थी वंदिता जी, जो रफी और आशा जी का जो शो आ रहा है उसके विवरण दे रही थी. तो चलो आगे बढ़ते हैं, वो विज्ञापन सुना देते, फिर उसके बाद रानी क्रिएशंस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का समय होगा.
2: सरगम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स. फॉर टिकट्स कॉन्टेक्ट 04

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: जी मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबान आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके सेवा में पेश करेंगे। चलें सर्वप्रथम रानी क्रिएशंस का एक खबर सुनते हैं।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: Rani Creations, आपका तहे दिल से स्वागत कर रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम भेंट कर रही है। याद रहे मित्रों, रानी क्रिएशंस का शॉप खुलेगा 10 बजे और शाम को बंद होगा 4 बजे। रविवार को 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। और यहाँ पर हर प्रकार के कपड़ों के साथ साथ सजने सजाने के लिए आपको ज्वेलरी वगैरह भी मिलेगी और ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं RaniCreations.com पर, देख सकते हैं यहाँ क्या मिलता है। गिफ्ट वेयर भी आप प्राप्त कर सकते हैं रानी क्रिएशन शॉप में। तो कपड़ा सबके लिए है यहाँ पर, हर अवसर के लिए भी कपड़े आपको मिलेंगे और बहुत ही उचित दाम पर कपड़े आपको मिलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं पहला गीत के साथ। धमाल फो फिल्म का गाना सारी सुनते हैं आपके लिए।

मित्रों, गुलाब साड़ी की बात आप कर रहे हैं तो रानी क्रिएशंस में बहुत बड़ा स्टॉक है सारीज का, और यहाँ पाकर हर प्रकार के सारीज खरीद सकते हैं, और उसके साथ साथ रेडीमेड ब्लाउज भी मिलेगा आपको और अंडा स्केट भी आप खरीद सकेंगे। तो याद रहे, बहुत ही उचित दामों पर आपको रानी क्रिएशंस में कपड़े मिलेंगे। तो लॉट्स ऑफ सारीज आर अवेलेबल, जो मटेरियल का चाहिए वो सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ आज फास्ट सॉन्ग्स लाया हूँ इस प्रोग्राम के अंतर्गत, और अब तेरी भाभी, इसके बारे में क्या सुनना है, सुनते हैं।

जय मित्र, तेरी भाभी खड़ी है। आप सुन रहे थे और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। हर प्रकार के कपड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे और साथ में ज्वेलरी वगैरह और स्टॉल्स ये सब आपको मिलेंगे। और साथ में अगर शादी वगैरह करें तो शादी का जोड़ा भी मिलेगा। एंड देयर विल बी स्पेशल कंडीशन अप्लाई ऑन डिस्काउंट्स, तो अप टू 50% ऑफ मिलेगा आपको कपड़ों पर। और इसके साथ साथ आप संजय सजाने के लिए बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज के साथ असोर्टेड आइटम्स भी हैं जो शायद आप कहें वो कपड़ा खरीदें तो कुछ कमी होती है, तो रानी क्रिस्टल शॉप में आकर पूरी कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला गीत, स्वीटी तेरा ड्रामा।

ये मित्रों लोकप्रिय गीत था और चले एक और क्यूटी पाई गीत का बोल है, इसे सुना देते हैं। और आप सुन रहे हैं परमानंद के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम के अंतर्गत रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। तो सुनते हैं इस गीत को, फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: ये मित्र, इस गीत के साथ ही रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम आज का यहीं पर समाप्त हुआ। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक 8 बजे से और 8:15 के बीच। और याद रहे, हर प्रकार के शॉपिंग के लिए रानी क्रिएशंस का नाम याद रखें, और वो स्थित है 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेबा। यहाँ पर आपको हर प्रकार के कपड़ों के साथ आपको सजने सजाने के लिए ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बॉयज वेयर, गर्ल्स वेयर, ये सब मिलेंगे, और स्टॉल्स वगैरह भी, और सारीज का बहुत बड़ा रेंज है, और अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा कपड़ों पर। तो चलें, विज्ञापन के साथ हम समाप्ति करते हैं, और आपको एक बार फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इस प्रोग्राम से, और मिलते हैं शनिवार को रानी क्रिएशंस प्रोग्राम में ठीक 8 बजे से। ख्याल रखिएगा, हैप्पी शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाकलावा स्ट्रीट, उलंगेबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: अब इस समय 18 मिनट हुए 8 बजकर, और याद दिला दें 8:30 बजे निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर, और फिर प्रोग्राम चलता रहेगा रेडियो ब्रिजबानी पर। कल रविवार है तो फिरोज भाई के साथ आप सुबह के बेला में सुनेंगे पुरानी गीतें, धार्मिक प्रोग्राम 7 बजे से 8 बजे तक, और फिर नंद किशोर दास प्रभु जी आ जाएंगे वेद बाणी को लेकर ठीक 8 से 9 के बीच। 9 बजे से जतीश जी आएंगे, फिर एक बार फिर फिरोज भाई आएंगे, और फिर रोय सिंह जी 12:30 बजे से, सुशीला जी 2:30 से। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ।

0: लाल पीली अखियां गीत आप सुन रहे थे। चलें विज्ञापन की तरफ, समय भाग रहा तेजी से। तो दो विज्ञापन बजाएंगे हम, पहला है रे 16 पावर का, तो उसे सुनते हैं, फिर एक और बजेगा।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ये मित्रों वही तो मेरी स्वीटहार्ट है, बस इसी गीत के साथ साथ आज का प्रोग्राम है संगीत सरगम का यहीं पर समाप्त हो रहा है। लेकिन भूलूंगा नहीं, कल है फादर्स डे, तो फादर्स डे के शुभ अवसर पर जितने हमारे वहां पर हैं फादर्स हैं सबको हम याद कर रहे हैं, और आपके जीवन में ऐसे दिन बार बार आते रहे। एक्चुअली फादर्स डे इज एवरी डे, तो हर दिन बस बच्चों से है जिनके अभी पिताजी जीवित हैं, अपने माता पिता का भाई भली भांति से सेवा कीजिए, आनंद लीजिए, मदद कीजिए उनको, क्योंकि एक बार वो चले जाएंगे ना तो कुछ खोया खोया लगेगा, और अंदर अंदर ऐसे सोचोगे कि भाई क्या हुआ, मैंने ये नहीं कर पाया अपने पिता के लिए, वो नहीं। जब तक वो जीवित हैं हर प्रकार से सेवा और उनको खुश रखने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ गॉड ब्लेस एवरीवन, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम

अब सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा व्हाट इज दिस ना ना ना ना ना ना, वेल ऑफ कोर्स वीकेंड है भाई। अब वीकेंड में मैंने ऐसी मस्ती नहीं की तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मैं वीकडेज में ऐसी मस्ती कर सकती हूँ? नो नो नो नो नो, मस्ती जितनी होती है वो वीकेंड पे होती है और ये है वीकेंड का प्रोग्राम। सो आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निव्या भी करने आई है थोड़ी मस्ती, लेकिन मस्ती अकेले नहीं करेगी, इस मस्ती में शामिल होंगे आप और साथ होगा उन गानों का जो एकदम है बेमिसाल। सो 10 चुनिंदा गाने टॉप 10 हॉट 10 मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, वो गाने जो ट्रेंडिंग है, हॉट है, हैपनिंग है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरी आरी आरी से। जी हाँ, आरी आरी आरी। और आप लोग बोलोगे कि ये गाना सुना सुना क्यों लग रहा है? वेल, सुना सुना तो लगेगा ही, क्योंकि ये है धुरंधर 2 का गाना और धुरंधर द रिवेंज को रिलीज हुए हुए महीनों हो गए हैं, मतलब इतने महीने हो गए हैं कि क्या ही मैं कहूं, लेकिन ये गाना फिर से एंट्री मार रहा है। क्यों? क्योंकि धुरंधर को छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। एंड इफ केस इन केस आपने नहीं देखी है धुरंधर, तो यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स एंड लेट मी नो योर थॉट्स यहां पर। ये गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों ये गाना आपने सुना, आरी आरी आरी, जी हाँ। अब ये गाना जो है वो बहुत पुराना है लॉजिकली तो, लेकिन इस पुराने होने के बावजूद भी इसका जो स्वैग है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ऊपर से शाश्वत सचदेव ने जो इस म्यूजिक के साथ किया है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। सो ऑफ कोर्स वी हैव अ ग्रेट ग्रेट सॉन्ग एंड दैट इज द रीजन इट्स ट्रेंडिंग अगेन नाउ। इफ यू हैवंट वॉच्ड धुरंधर 2, यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स जैसे मैंने कहा था। और उसे देखने के लिए आपको थोड़ा अपना दिल जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर गना बी सीन्स व्हेन यू विल बी लाइक What is happening here? मतलब मेरा दिल जो है वो दहल रहा है। या that can happen. So of course अपने दिल का ख्याल रखिए और उसी के साथ उसको देखिएगा। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, which is ऊंचा लंबा कद। जी हाँ, ऊंचा लंबा कद मतलब लंबी लंबी हाइट। जी हाँ, so लंबी लंबी हाइट वाला ये गाना जो कि कैटरीना कैफ का गाना है लॉजिकली, लेकिन इस गाने को आए हुए सदियां बीत गई हैं और उस सदियों के बाद इसे फिर से रिन्यू और रिमिक्स और रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। बट Anything can be recreated, but not Katrina Kaif ki adaaye. Matlab Disha Patni is good, but Katrina Kaif is literally unbeatable.

तो ये जो गाना है वो डेफिनेटली हमें बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारी मेमोरीज जो है वो लेकर आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि ये गाना हमने बहुत पहले अर्ली 2000s में सुना था. और ये गाना सच में हमारे लिए क्या है, वी नो दैट वेरी वेल, राइट? कैटरीना कैफ की वो अदाएं, अक्षय कुमार की वो बेबाकी और ये गाना, लाइक लिटरली वाइब. मुझे तो ये भी याद है कि आई थिंक मैंने किसी जगह इस गाने पे परफॉर्म भी किया था. या आई थिंक इट वॉज अ फंक्शन, आई डोंट नो इफ इट्स अ कॉलेज फंक्शन और स्कूल फंक्शन, बट या इट इज अ मेमोरी, होल न्यू मेमोरी.

पूरी तरह से तैयार हूँ, विच इज ब्याह करवा दो जी। अब वैसे तो बहुत सारे मिलेनियल्स को शादी करनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को करनी भी है। एंड आई थिंक मिलेनियल्स से पहले वाली जो जनरेशन थी उसको भी शादी करनी थी, मिलेनियल्स के बाद वाली जो जनरेशन है जेंजीज उनको भी शादी करनी है, सिर्फ मिलेनियल्स को शादी नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने इस मैट्रिक्स को भेद लिया। उनको पता चल गया कि शादी वादी में कुछ नहीं रखा बेड़ू, अपना कमाओ अपना खाओ और अपना गाओ। वेल, गाओ तभी अगर आपका आवाज अच्छी है, नॉट लाइक मी, फिर मत गाइएगा, नहीं तो दूसरों का कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ ये गाना आप सबके लिए, विच इज व्याह करवा दो जी। एंड आई थिंक ये गाना इसलिए भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि शादी सीजन इज ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड पीपल आर गाना परफॉर्म ऑन दिस सॉन्ग अ लॉट। जी हाँ,

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला गाना आपको सुनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि है 7वें नंबर का गाना और उस गाने का नाम है आंखों से तूने ये क्या कह दिया दिल ये I'm so sorry, I wasn't gonna sing, but भावनाओं में बह के इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। ठीक है, मुझे पता मुझे नहीं गाना है, सो आइए हम उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने से अच्छे से गाया है। और ये गाना है आंखों से तूने का सेकंड रिमिक्स, विच इज 2.0 वर्जन। या वी हैव मेनी 2.0 वर्जन इन दिस लिस्ट, सो ब्रेस योर सेल्फ। एंड इसी के साथ भाई तेरा स्टार है मूवी का ये गाना है, जो कि रिलीज होके चली गई है और इतनी हिट नहीं हुई है, बट अगेन ये OTT पे आपको जल्दी मिल सकती है। इसी के साथ आंखों से तूने आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। यहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो आधी होने वाली है ऑलमोस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन उसमें अभी एक और गाना बाकी है। जी हाँ, एक और गाना जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजेदार है, और उसका नाम है इश्क मस्ताना। जी हाँ, इश्क मस्ताना है मूवी का गाना, जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा। नसीर साहब ने क्या एक्टिंग की। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा नसीर साहब कब बुरी एक्टिंग करते हैं। ही वाज ऑलवेज अ गुड एक्टर, राइट? बट देयर वाज अ टाइम जब उन्हें दिलीप कुमार ने कहा था कि इतने अच्छे घर के बच्चे हो, क्या करोगे एक्टिंग करके, अच्छे घर के लोग, अच्छे घरों के बच्चे एक्टिंग नहीं करते। और तब नसीर साहब यही सोच रहे थे कि मैं क्यों बोल नहीं पाया कि आप भी तो अच्छे घर के बच्चे हो, आपने क्यों एक्टिंग शुरू की फिर। जी हाँ, लेकिन ऑफकोर्स इसको वो बोल नहीं पाए, वो सिर्फ उनके दिल में रह गई बात। और यहाँ पर नसीर साहब ने बहुत ही खूबसूरत सा कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है, और इश्क मस्ताना उसी मूवी का गाना है मैं वापस आऊंगा। दो लोग प्यार में हैं और दोनों लोगों के प्यार की कहानी के बीच में वतन जो है वो अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक वतन में चल जाता है, दूसरी जो है वो दूसरे वतन में चली जाती है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, और इसकी वजह से उनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। लेकिन क्या वो सच में अधूरी रही? जी हाँ, यही जानने के लिए आपको देखनी होगी मूवी विच इज ऑन नेटफ्लिक्स। मूवी का नाम है मैं वापस आऊंगा, और मैं हमेशा कहती हूँ इम्तियाज अली की बनाई हुई ये मूवी, एआर रहमान का म्यूजिक आपको लिटरली वो इमोशंस फील करवाएगा जो शायद आपने काफी वक्त से फील ना किए हो। यू आर गना फील इमोशनल, यू आर गना क्राई, बिकॉज यू देयर इज नो वन जिसने ये मूवी देखी है जो अभी तक रोया ना हो। जी हाँ, बट आई थिंक इट्स नॉट इन अ बैड वे। जी हाँ, सो सुनिए आप इस गाने को, क्योंकि गाना भी एक नंबर का म्यूजिकल पीस है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? मतलब इसमें पॉप है, इसमें क्लासिकल है, इसमें सब कुछ मिक्स है। व्हाई एम आई सेइंग इट? सुनिए, खुद ही पता चल जाएगा।

0: ஒப்பாட்டுதல்
1: பிரியா, நெக்ஸ்ட் மந்த் மாமா கா பர்த்டே, சோச் ரஹி ஹூன் உன்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கே த்ரூ நியூசிலேண்ட் மணி பேஜ் தூ, ஜிஸ்ஸே வோ அப்னி பசந்த் கா கிஃப்ட் லே லேங்கே. யே தோ பஹுத் அச்சா ஐடியா ஹை, மேரே பாஸ் ஏக் அச்சா ஆப்ஷன் பீ ஹை மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கர்னே கா. அச்சா, வோ க்யா? அப் தும் கர் பேட்டே நியூசிலேண்ட் யா ஃபிஜி மே பீ மணி பேஜ் சக்தி ஹோ, லோட்டஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கி ஹெல்ப் சே ஆன்லைன் ஆர் வோ பீ ஃப்ரீ மே.
2: லேகின் மாமா கே லியே மணி லேனே கஹீ தூர் ஜானா பாசிபிள் நஹி ஹோகா.
1: அரே, ரிசீவர்ஸ் அப் கேஷ் பிக்அப், பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யா மொபைல் வாலெட் மே பீ லே சக்தே ஹை மணி. டவுன்லோட் கீஜியே லோட்டஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் online au.lotusfx.com app aaj hi visit kare.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है.
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, क्या आपने भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट की? जी हाँ, क्योंकि कान्हा जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद. जी हाँ, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं. कृष्ण भगवान के आगमन की आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं. और मैं आपको खुशी विश करना चाहती हूँ. मैं आपको खुशियों के साथ बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ और सारी अच्छी चीजें आप इस साल अट्रैक्ट करें, ये सब मैं आपको विश करूंगी. और कान्हा जी बहुत ज्यादा नटखट है, यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ही ज्यादा नटखट है. तो मैं यही कहूंगी कि जितनी नटखटगिरी उन्होंने की है उतनी आप मत कीजिएगा, क्योंकि उनको तो कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको जरूर बोलेंगे. जी हाँ, सो हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन. कल से ही शुरू हो गई थी, पिछले कल से जन्माष्टमी. और मैं यही कहूंगी कि आप सबको ये जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. और क्योंकि जन्माष्टमी की यहां पर बात हो रही है, तो मैं इतना कहूंगी कि आप हनुमान अंश जरूर देखें. जी, हनुमान अंश एक मूवी है जो कि रिलीज हुई है, जो कि लिटरली 2.25 करोड़, यानी कि पूरे 2 करोड़ में भी नहीं बनी थी, 40 करोड़ की कमाई जो है वो कर चुकी है. और कमाई करने के साथ साथ एक और चीज उसने की है, और वो है लोगों को थिएटर्स में बुलाना, वो भी मासेस में, बिकॉज यू कैन लिटरली वॉच इट विद योर फैमिली. ये कहानी है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. इसमें आपको पता चलेगा उन के बारे में जो कि काफी लोगों को इंस्पायर करते आए हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे भी. जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नीम करोली बाबा. और वो जगह कौन सी है? जी हाँ, आई एम नॉट गोना से मच, बट द थिंग इज कि पहले आप जो है वो इस ट्रेलर को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, बट जरूर चेक इट आउट. जी हाँ, इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

दोस्ती के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं इस हफ्ते आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में और क्या क्या देख सकते हो। वेल, हनुमान अंश के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे वो डार्क हॉर्स की तरह आगे हुई आती हुई नजर आई है सबको। सबको लगा था कि मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन एकदम से वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हो गया कि लोग थिएटर्स में पहुंच गए उसे देखने के लिए और वो 40 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवीज, अदर मूवीज विच यू कैन वॉच इन द थिएटर्स। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हिंदी मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स टॉक्सिक लगी हुई है थिएटर्स में, एंड टॉक्सिक के आगे लिखा गया है अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। जी हाँ, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। नाउ क्यों है ये ऐसी फेरी टेल ग्रोनअप्स के लिए, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका ट्रेलर देखोगे, और ट्रेलर देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा इसे देखने, क्योंकि तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं क्यों कह रही थी, मैं क्यों स्ट्रेस दे रही थी कि आपको ट्रेलर देखकर ही इसे देखने जाना चाहिए। नाउ इसके अलावा जो आप मूवी देख सकते हैं वो कौन सी है? वेल ऑफकोर्स उसके अलावा जो मूवी है उसका नाम है मिर्जापुर द मूवी। नाउ मिर्जापुर का भी मैं आपको यही कहूंगी कि ट्रेलर देखे फिर जाइएगा, क्योंकि मिर्जापुर मूवी भी मिर्जापुर सीरीज की तरह ही है कुछ, और उसमें बहुत सारी कर्सिंग यानी कि गालियां हैं, और मिर्जापुर का फैन बेस बहुत ज्यादा है, बट अगेन देयर आर मेनी पीपल जो उसको पसंद नहीं भी करते बिकॉज ऑफ ऑल द कर्सिंग सिचुएशन। सो या, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन ओनली गो फॉर इट, एंड डोंट टेक योर किड्स विद यू बिकॉज यू कांट वॉच इट विद योर किड्स, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ मूवी। जी हाँ, इसी के साथ अब एक और मूवी है विच इज आई एम गेम। जी हाँ, ये है फैंटेसी थ्रिलर और इसमें है आपको मिलने वाले हैं दिलकीर सलमान, साथ में कयादू लोहर आपको मिलने वाली है, विच इज अ यू नो साउथ इंडिया काइंड ऑफ मूवी, बट अगेन वर्ड ऑफ माउथ इसके लिए भी अच्छा है, सो यू कैन वॉच इट टू। नाउ ये तो थी कुछ हिंदी मूवीज और कुछ इंडियन मूवीज जो आप देख सकते हैं। लेट्स जस्ट गो towards the Hollywood movies, और Hollywood movies की अगर बात करें तो सबसे पहले The Odyssey is still in the theaters, इसके अलावा और कौन कौन सी movie है I'm gonna tell you about that, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और गाना जो कि है वाला, और ये है Cocktail 2 का गाना which is on Netflix, watch it on Netflix।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले आपको जरा बाकी मूवीज के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि आपको याद है ना, हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी मूवीज आप थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। उसमें इंडियन मूवीज के बारे में बात हम कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉलीवुड मूवीज अगेन। द ओडिसी इज स्टिल इन द थिएटर्स, यू कैन वॉच इट। इट्स ऑन द ग्रीक मैथोलॉजिकल चैप्टर, यानी कि ग्रीक मैथोलॉजी के एक चैप्टर पर ही बनी है, जहां पर द ओडिसियस जो कि ग्रीक हीरो है, ट्रोजन वॉर के बाद वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, पर वो घर जाने की जर्नी जो है वो 10 साल में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद वो घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे। एंड इट्स अ क्रिस्टोफर नॉलन मूवी, सो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नीड टू से। इसी के साथ स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे इज स्टिल इन द थिएटर्स एंड इट्स स्टिल रॉकिंग, लाइक लिटरली इट्स स्टिल रॉकिंग। व्हाट कैन आई से, दिस मूवी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे स्टिल। एंड ये मूवी आप अपने बच्चों के साथ थिएटर्स में जाके देख सकते हैं, या गो एंड टेक योर किड्स विद यू, बिकॉज दिस मूवी यू कैन वॉच इट विद योर किड्स। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी है जो कि आपको डरावनी गलियों में लेकर जाने वाली है, एंड मैं बात कर रही हूं इंसीडियस आउट ऑफ द फादर। या यू कैन वॉच इट ऑन Netflix, not Netflix, you can watch it in the theaters right now, पर उसके बाद आपको ये मिलेगी of course HBO Max पे। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या देख सकते हो? Well, फिलहाल के लिए यही है, लेकिन उसके बाद जो भी नया आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। अगला गाना है राणा जी 2.0, ये है तीसरे नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर एक डॉगी जो है वो बड़े ही प्यारे से तरीके से जो है वो बैठा होता है, वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है, यानी कि वो समझने की कोशिश कर रहा होता है उसका ओनर क्या कह रहा है। और उस पे लिखा हुआ था कि यू नो व्हाट, वी कैन अंडरस्टैंड सो मेनी ह्यूमन वर्ड्स, वी कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, बट ह्यूमन can never understand what we are talking whenever we bark. Guess who is smart now? जी हाँ, I was like, yeah. मतलब हम डॉग से जब बात करते हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं और कभी कभी हम उनके साथ आर्ग्यू भी करते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं। नाउ वी वट एवर वी से उनको कहीं ना कहीं समझ आ जाती है चीज, जब उनके हम उनकी चुगली चपाटी करते हैं, हम उनकी शिकायतें करते हैं, उनको वो भी समझ आ जाता है, बेसिकली उनको सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन जब वो बात करते हैं या कुछ भी हमको समझाने की कोशिश करते हैं, हमको नहीं आता, तो कौन स्मार्ट हुआ, हम में या डॉग्स में से? डॉग्स, ऑफ कोर्स डॉग्स, और डॉग्स को ये बात समझ आ गई है कि वो ज्यादा स्मार्ट है। Guess what's gonna happen? I don't know. But उनको definitely पता चल गया कि humans are not that smart. यहाँ पर अगला गाना आप सबके लिए, which is from the movie Toxic, and ये है यश नयनतारा, तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी की मूवी।

जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का और हम जा रहे हैं, वापस आएंगे आप कब? ऑफ कोर्स मंडे को मिलना होगा, मंडे को और जुलना भी होगा मंडे को। आप लोग बोलोगे मिलना होगा मंडे को, जुलना भी होगा। अरे बोलते हैं ना मिलना जुलना होगा, जी हाँ। सो मैंने मिलना भी अलग कर दिया, जुलना भी अलग कर दिया, पर बात तो सेम है। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा कभी कभी तुम्हारा ह्यूमर ना ऑफ द चार्ट चला जाता है। चलिए ठीक है, आपको समझ आता है, मेरे लिसनर्स को आता है ना समझ, दैट्स व्हाट is important। जी हाँ, इसी के साथ अब मिलते हैं आपसे मंडे को। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग और नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता एंड सच, अवारापन 2 इज ऑल्सो इन थिएटर्स। यू कैन वॉच इट एंड you can watch it and you can enjoy it with your family. No, you can't enjoy it within your family. Matlab, of course, you can enjoy it with your partner or your friends maybe, but not with your kids. It's not a family movie. It wasn't. The Awarapan 1 wasn't and Awarapan 2 is also not. So, gaane jo hain, wo Awarapan ke hi kuch liye gaye hain, jo ki isko classy banate hain. Aur ye hai Tera Mera Rishta, jo hai number 1 gaana hai, safte ki top 10 hot 10 ki list ka. Sunte hain isko and milenge ab aapse Monday ko.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
2: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04-

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।